दर्शकों तुम्हें सारे ही सुने प्यारा दिया गीत दर्शकों फिर ते अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो तुम्हें सारे भी सुना कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह तुहां सारेयां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं तुहां सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुना देने से सुना देने माटी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। तो कार्यक्रम च फिर यहाँ अगे बढ़ना है जिहड़ा कि तुहां दा ध्यान है से फिर एक गीत संगीत की तरफ ले चलते हैं।

दर्शकों तो हाँ सारे ही सुने ये प्यारा दिया गीत दर्शकों फिर ते हाँ अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते हाँ अगे बढ़ाना है फिर ते सुनते निक प्यारा दिया गीत तो तुह सारे भी सुना कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है।
2: और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है,

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: तकना तकना आओगे।
1: ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: 92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।
1: बन गया अच्छा
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

0: 91.2
1: मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा

ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

देख के जब ठोस अच्छे हैं जो

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने,

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओ, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार, भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास और शानदार, राखी के धागे में छिपी है विश्वास की।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

जन्माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान क्या जुलूम है,

सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं बज गए हैं 9 और हम पहुंच गए हैं स्टूडियो 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला के और शुरू हो गया है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और इस वक्त हम लाइव हैं अपने फेसबुक पेज से भी। खैर कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बातें होंगी, कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, इसके बारे में तो हम कार्यक्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बात करेंगे और खोलेंगे अपना जादू का पिटारा। और इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ 11 बजे तक। जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम 9 से लेकर के 11 बजे तक होता है और इसमें बहुत सारी जानकारियां भी हम आपको देते हैं, नए पुराने गीतों के साथ आपका मनोरंजन भी करवाते हैं। और साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि हम आप सभी से बातचीत भी कर पाएं। और बहुत सारे दिनों से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि शायद हो सकता है किसी मौसम के चलते या नेटवर्क नहीं होता है कई बार, तो बहुत दिनों से आप लोग फ़ोन कॉल्स नहीं कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि जो भी विषय हम यहाँ से कहते हैं उस पर आपके मन में कोई भी बात हो तो आप हमसे ज़रूर फ़ोन कॉल करके संपर्क कीजिएगा, बात कीजिएगा, लेकिन पहले कार्यक्रम थोड़ा सा सुन लीजिएगा। और कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि किस वक्त आपको कॉल करना है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम एक खूबसूरत विचार के साथ। और ये जो आज का विचार है ना, ये कम शब्दों में नहीं है, मतलब 2 लाइनों में नहीं है, थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी आपको इस विचार के लिए और तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हम कहना क्या चाहते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि चिड़िया को रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला और वो उस रोटी के टुकड़े को लेकर उड़ने लग गई, मगर कुछ कौवे उसके पीछे अचानक पड़ गए और कौओं ने उसको आसमान में घेर लिया चिड़िया को। और चिड़िया जो थी वो बड़ी छोटी सी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। रोटी का जो टुकड़ा था वो काफ़ी बड़ा था, भारी था और ज़्यादा तेज़ी से वो उड़ नहीं पा रही थी। उसे अचानक लगा कि उसकी जान भी जोखिम में है, फिर उसने क्या किया होगा, पता है ना आपको भी क्या किया होगा। उस चिड़िया ने उस रोटी के टुकड़े को छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ते ही कुछ कौए तो रोटी के टुकड़े की तरफ लपक गए, लेकिन कुछ अभी भी उसके पीछे लगे हुए थे। परंतु अब चिड़िया क्योंकि हल्की हो चुकी थी तो फुर्ती से वो उड़ी और कौओं को पीछे छोड़ दिया और अपनी जान उसने बचा ली। तो अब जो मॉरल निकल के आता है इस कहानी के पीछे, यानी कि जो आज का हमारा विचार है वो ये है कि हमारे जीवन में भी कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ उम्मीदें ऐसी होती हैं जिन्हें हम आसानी से छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जीवन का सत्यानाश कर लेते हैं, इसीलिए डिलीट करते रहिए समय समय पर अपनी ज़िंदगी से कुछ शिकायतों को, कुछ बातों को, कुछ लोगों को और उनके बुरे रवैये को, वरना आप हैंग हो जाओगे। और छोड़कर देखिए तो आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। तो आज हम कार्यक्रम में भी
यही कोशिश करेंगे कि बिल्कुल हल्के फुल्के तरीके से कार्यक्रम किया जाए। और हमारे फेसबुक पेज पर कोई लाइक्स भेज रहा है और कुछ कह भी रहा है भाई। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी नाइस एंड मोटिवेशनल मैसेज। धन्यवाद धन्यवाद आपका देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी तो कार्यक्रम शुरू ही हुआ है, तो चलिए अगर आपको लगता है ये मोटिवेशनल मैसेज है तो एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो जाए, कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

गुड्डी फिल्म का ये गीत सुना आपने वाणी जयराम और साथियों की आवाज़ों में। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। श्रोताओं जी हाँ, मन की शक्ति की बहुत ज़रूरत है आजकल हम सभी को, क्योंकि हम ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं, अपने आसपास में कुछ चीज़ें देख रहे हैं जिससे कि मन सच में बहुत भर सा आता है ना। आजकल हम सभी लोगों को लग रहा है कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है। और हम कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं हों, परंतु अब ये प्राकृतिक आपदा है, इसका क्या कहा जा सकता है श्रोताओं। ना तो हमारे बस में है, और कुछ लोग कह रहे होते हैं ना कि भाई देखो ये ऐसा है कि लोगों ने बड़े पाप किए हैं और उसकी सज़ा मिल रही है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। परंतु हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह की चीज़ें की ही क्यों जाएं कि हमें बाद में ये सोचना पड़े, पछताना पड़े कि हाँ हमने शायद ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। क्योंकि जब सोशल मीडिया पर हम ये चीज़ें देखते हैं और लोग वहाँ पर कमेंट करते हैं कि वहाँ पर इस तरह से हुआ, किसी समुदाय ने किसी समुदाय को बहुत यातनाएं दी, इस वजह से ऐसा हुआ, तो वहाँ पर फिर ऐसा लगता है कि शायद दूसरा व्यक्ति जो है वो खुश हो रहा है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, तो शायद एक समुदाय के लिए ये खुश होने वाली बात है कि दूसरे समुदाय के ऊपर इस तरह से हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि हमारे ही तो भाई बंधु उसमें गए, बहुत सारे लोग जो गायब हैं, जो लापता हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा है, तो वो लोग भी उसी आपदा में कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं। अब चाहे किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, लेकिन हैं तो वो इंसान ही ना, और इंसान तो छोड़िए जानवर भी तो उसमें गए हैं। तो इसमें इस तरह की चीज़ें बोलना करना कोई बहादुरी नहीं है। आप शुक्र मनाइए कि आप अपने अपने घरों में सेफ हैं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति का कोई पता नहीं कि आज वहाँ हुआ कल कहीं और भी हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये देखिए कि हम आखिरकार कर क्या रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसे भी देखे गए कि उस मलबे में, उस गंदे पानी में उतर करके लोग जो हैं वो बॉडी से सोना यानी कि उनके जेवर वगैरह निकाल रहे थे, वो भी बड़ा एक मार्मिक दृश्य था। हालांकि अब पता चला है कि उस पर कुछ पुलिस कंप्लेंट्स हुई हैं और पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा भी है, पर खैर ये बाद की बात है। परंतु आप पहले क्या कर रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि जो लोग चले गए वो तो खैर चले ही गए, लेकिन आप भी कितने दिन तक, हम भी कितने दिन तक इस धरा पर हैं, इस धरा का, इस धरा पर बस धरा रह जाएगा। खैर मौसम का हालचाल बता देते हैं आपको। इस समय धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान बना हुआ है 19 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी है 67%, और 3 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट भी किया गया है। और भारी बारिश का येलो अलर्ट, देखिए कल रात को भी आपने देखा कि बारिश जब शुरू हुई तो तड़ातड़ बारिश पड़ती रही, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो हम कहते हैं ना पंछी बैठे हुए थे लेकिन अब उठ गए हैं, लेकिन पंछियों के बैठने और उठने से कोई मुझे नहीं लगता रिलेशन है इस बारिश का। बारिश ने जब आना है तब आएगी, और हम बस केवल अनुमान लगा सकते हैं कि संग्रांत से पहले 8 दिन ऐसा होता है और बाद के 8 दिन ऐसा होता है, तो मतलब
ठीक है, वो दिल की तसल्ली देने के लिए बातें सही हैं, कुछ बड़े बुजुर्गों ने अगर बनाई हैं, और उस वक्त क्योंकि न मौसम विज्ञान केंद्र होते थे ना कुछ होता था, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कही जाती थी और अपने दिल को तसल्ली दे ली जाती थी कि बरसात अब शायद धीरे धीरे थोड़ी ख़त्म होगी, कम होगी। लेकिन अभी तक देखने से ऐसा लग नहीं रहा, दिन के वक्त बरसात कम होती है। अभी भी मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी तो बारिश जो है वो पड़ ही रही थी, हालांकि मैं तो रेनकोट से कवर होकर के आई कि रास्ते में अगर एकदम से शुरू हो गई तो फिर इतना समय नहीं होता है कि हम कहीं पर अपना टू व्हीलर रोकें या गाड़ी रोकें और रेनकोट पहने, तो इसलिए पहले से ही प्रिपेयर होकर के आना सही रहता है। हालांकि एक बूंद बारिश तो मेरे ऊपर नहीं पड़ी, लेकिन हाँ अब बाहर का मौसम जो है वो कुछ ऐसा ही है। और अब मौसम के बारे में और थोड़ी जानकारी हमें मिल जाएगी प्रादेशिक समाचारों में, जो अभी शुरू होने वाले हैं थोड़ी ही देर में, तो हम उसके लिए चलेंगे और आपको भी लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो, और उसके बाद फिर 9:30 पर हम हाजिर हो जाएंगे दोबारा से आपसे बातचीत करने के लिए। आज बातचीत थोड़ी सी लंबी हो रही है और इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि गीत संगीत थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम समाचारों के बाद ये कमी भी आपकी पूरी कर देंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से हमीरपुर और कांगड़ा जिला के 2 दिवसीय दौरे पर, कई विकासात्मक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 137वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। प्रदेश के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शुरू होगी थेरेपी ऑन व्हील्स मोबाइल सेवा। समग्र शिक्षा और साफिया फाउंडेशन के बीच हुआ MOU साइन। केंद्र सरकार की रैंप परियोजना के माध्यम से ऊना जिला में महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। और धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई सेवा 1 सितंबर से फिर होगी आरंभ, सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध होंगी उड़ाने। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से हमीरपुर और कांगड़ा जिला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आज डाडासीबा में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। वहीं मछुआरा सम्मान निधि वितरण व मछुआरा सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। आज शाम मुख्यमंत्री का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नदौन के भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम है। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अपने पैतृक गाँव सेरा के लिए रवाना होंगे। कल मुख्यमंत्री कांगू में जन स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे देहरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे और यहां मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि वितरण व सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र की एकीकृत बागवानी मिशन की योजना के अंतर्गत किसानों बागवानों को छोटे कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। इससे प्रदेश की फल और सब्जियों की पैदावार को जल्द खराब होने से बचाया जा सकेगा। साथ ही 2 से 3 महीनों तक बाजार में अच्छे मूल्य मिलने तक स्टोर किया जा सकेगा। ये जानकारी देते हुए उद्यान विभाग के निदेशक सतीश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत 10 से 30 टन तक के कोल्ड स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं।
1: लोगों को छोटे छोटे जैसे स्टोरेज कोल्ड स्टोर उपलब्ध हो जाएंगे तो लोगों को एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन में लॉस होता था, 2-4 दिन जब सड़कें खराब हो जाती हैं या कुछ और हो जाता है तो वो अपने ही स्टोर में स्टोर कर सकता है और उसको जब अच्छी मार्केट मिलेगी 2-3 महीने के बाद तो उसका अच्छा जो आमदनी है, जो उसका रेट है तो अच्छा मिलेगा। 30 मीट्रिक टन वाले इसमें तो 10-12 लोगों ने अभी तक अप्लाई भी कर दिया है। जिन लोगों ने किसान बागवानों ने स्थापित कर 4 लोग हैं जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में मशोबरा में और हमीरपुर में 2-3 किसान हैं, उन्होंने लगाए हैं।
0: प्रदेश में दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, थेरेपी और विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा और साफिया फाउंडेशन ने थेरेपी ऑन व्हील सेवा शुरू करने की पहल की है। इसके शुरुआती चरण में मंडी, शिमला और कांगड़ा जिलों में 3 मोबाइल रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 3 बसों को विशेष रूप से थेरेपी उपकरण, काउंसलिंग और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाओं से लैस किया गया है। समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में ये मोबाइल सेंटर उन बच्चों तक विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने में मदद करेंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
2: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
3: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th-6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th-8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन को सुधारने और उसमें तेजी लाने के लिए शुरू की गई रैंप परियोजना के तहत प्रदेश में उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ऊना जिले के हरोली में महिला उद्यमियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 25 महिला उद्यमियों ने प्रशिक्षण लिया।
4: ऊना जिला में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमिता से जुड़ी महिलाओं की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र द्वारा इन दिनों प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में केंद्र सरकार की राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना के माध्यम से हरोली उपमंडल में समूहों से जुड़ी 25 महिलाओं को उनकी उद्यमिता विकास और अपने कार्यक्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक इस्तेमाल पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिससे ये महिलाएं अपने कारोबार को नई दिशा देने में सक्षम होंगी। प्रशिक्षक बिंदु महाजन ने बताया कि मौजूदा दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कारोबार की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को प्रभावी बनाने के उपयोगी माध्यम बन चुका है और इसका इस्तेमाल उत्पादों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने और संभावित ग्राहकों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: इन दिनों खराब मौसम के चलते ठप पड़ी धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई सेवा 1 सितम्बर से दोबारा शुरू की जा रही है। विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने इस रूट पर अपना शेड्यूल जारी कर दिया है जिसके अनुसार सप्ताह में 4 दिन ये हवाई सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस रूट पर हवाई सेवा बहाली से एक बार फिर यात्रियों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से कमजोर पड़ा मानसून आज शाम से एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश के मध्यमवर्ती जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा जबकि कल से अगले 5 दिनों तक मानसून की सक्रियता से मैदानी व मध्यमवर्ती क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
5: 30 अगस्त की देर शाम से जो मानसून फिर से सक्रिय होगा और 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक संभावना है कि प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं जो मध्यवर्ती हैं यहाँ पे कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ में 31 अगस्त और 1 सितंबर को संभावना है कि हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश साथ एक दुकानों में भारी बारिश हो सकती है। ओवरऑल 1 जून से लेकर 28 अगस्त तक बात करें तो पूरे प्रदेश में एवरेज जो एक्चुअल बारिश है वो सामान्य से अराउंड 10% कम रिकॉर्ड की गई। हालांकि केवल 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें श्रेष्ठता लाहौल स्पीति जहाँ पे सामान्य से 57% कम रिकॉर्ड की गई।
0: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की एक खबर है हिमालयी झीलों की गहराई और क्षमता का आंकलन करेगा आईटीआई मंडी का उपकरण सोनार। पंजाब केसरी के अनुसार विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर शेष 4 दिन की बैठकों में भी हंगामे के आसार है। 31 अगस्त के विधानसभा सत्र से पहले ही पक्ष विपक्ष फिर से बनाएंगे रणनीति। अस्पतालों में हिमकेयर के तहत पैकेज रेट अथवा वास्तविक खर्च में से जो कम होगा उतना ही मिलेगा क्लेम, दैनिक भास्कर की एक खबर है। दिव्य हिमाचल लिखता है कि गगल एयरपोर्ट के साथ बनेगी एरो सिटी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी परियोजना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से हमीरपुर और कांगड़ा जिला के 2 दिवसीय दौरे पर, कई विकासात्मक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 137वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। प्रदेश के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शुरू होगी थेरेपी ऑन व्हील्स मोबाइल सेवा, समग्र शिक्षा और साफिया फाउंडेशन के बीच हुआ एमओयू साइन। केंद्र सरकार की रैंप परियोजना के माध्यम से ऊना जिला में महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित और धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई सेवा 1 सितंबर से फिर होगी आरंभ, सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध होगी उड़ाने। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन

गुंजन धर्मशाला से मैंने कहा था ना आपसे कि बस गीतों की कमी अब पूरी की जाएगी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो में, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। हूँ आपके साथ आपके रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

जी हाँ, ये गीत संगीत ही तो होते हैं जो आरजू जगाते हैं। और ये जो गीत अभी आपने सुना ना, यस बॉस फिल्म का, अगर इस गीत को आप किसी भी दृष्टिकोण में देखें, चाहे आप ये सोचें कि आप ये माँ के लिए

रहे हैं या अपनी भाई के लिए गा रहे हैं या अपनी बहन के लिए गा रहे हैं, जैसे भी आप इमेजिन करेंगे ना, आपको वैसे ही गीत नजर आते हैं। सारे तो नहीं, पर हाँ कुछ एक गीत ज़रूर ऐसे होते हैं जो कि आप सूफी भी जोड़ सकते हैं, मतलब उस शक्ति से भी कनेक्ट कर सकते हैं उन गीतों को। तो यहाँ पर आज मैंने इस गीत को कनेक्ट किया है बहनों के साथ। तो कल का दिन बड़ा ही अच्छा, बड़ा सुहावना था, ख़ास करके हमारे हिंदू धर्म के लिए बहनों ने भाई की कलाई पर सजाया स्नेह का धागा। आपको पता है कांगड़ा जिला में रक्षाबंधन का पावन जो पर्व था, ये आपसी प्रेम उत्साह और रिश्तों की अनूठी मिसाल के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों में पूजा की थालियों से गूंजती आरती की आवाज़ों के साथ बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रेशमी धागे बांध करके उनकी लंबी उम्र की कामना की, और वहीं भाइयों ने भी बहनों को उनकी सुरक्षा का वचन दिया। अब आपको लिए चलते हैं हम जोनल अस्पताल की तरफ। जी, धर्मशाला में भर्ती मरीजों की बहनों ने वार्डों में पहुंच करके अपने बीमार भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधी, जिससे कि अस्पताल का माहौल पल भर के लिए भावुक हो गया। और साथ में उन्होंने ये दुआएं भी की कि अगर वो बीमार हैं तो जल्दी से ठीक होकर अपने अपने घरों को वापस आ जाएं। और दूसरी तरफ जिला जेल में भी बहनों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बंदियों को उनकी बहनों ने राखी बांध करके एक नई शुरुआत का संकल्प दिलाया। और इसके साथ बाजार भी सुबह से ही रंग बिरंगी राखियों, मिठाइयों और उपहारों की दुकानों से सजे रहे, जहां लोगों की भारी आवाजाही ने त्योहार की रौनक को कई गुना बढ़ा दिया था। और दोस्तों, मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ कि राखी का ये त्यौहार सिर्फ एक दिन पर सीमित नहीं होता है। कुछ बहनें, कुछ भाई जो इस दिन पर नहीं मिल पाते हैं, वो आगे आने वाले कई महीनों तक, मतलब अपना जो ये त्यौहार है ये मनाते हैं। यानी कि जब भी वो आपस में मिलेंगे कभी भी, तब वो एक भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे। और अब तो कहीं कहीं पर ये भी रिवाज हो गया है कि जो बहनें होती हैं वो भाभियों की कलाई पर भी राखी बांधती हैं और एक दूसरे को भी राखियां बांधती हैं। बहनें भी एक दूसरे को बांध लेती हैं, जिनके भाई नहीं होते हैं वो एक दूसरे को आपस में बांध लेती हैं, और जिनकी बहनें नहीं होती हैं वो भाई भाई भी आपस में इस तरह से कर लेते हैं। खैर, बड़ा ही प्यारा, बड़ा खुशियां लाने वाला ये त्योहार होता है। मकसद केवल एक ही होता है कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है वो हमेशा सुरक्षित रहे, उसके जीवन में खुशियां बनी रहें। और इसी के साथ हम भी आपकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। ये देखिए ना, चाहते हैं हम कि आपके चेहरे पर भी हमेशा स्माइल रहे।

जी, तो स्माइल देखे, देखा आपने भी एक दूसरे को। जरूर, कल तो बहुत सारी स्माइल्स दी होंगी आपने। तो ये है 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया, और टेक्निकल असिस्टेंट में मेरे साथ हैं शशि मैडम, और वो भी यहाँ पीछे से मुझे एक बहुत बड़ी सी स्माइल दे रही हैं। और आप जानते ही हैं शशि की स्माइल तो वैसे ही बड़ी गुड लुकिंग होती है। और सच में जब ये मेरे साथ बैठी होती है ना, तो हमारा दिन तो वैसे ही बन जाता है उसकी स्माइल्स देख देख कर। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि आज क्या क्या है। सब कुछ अभी ही जान लेना चाहेंगे आप, या कार्यक्रम में आगे बढ़ते बढ़ते भी बताऊं? चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ। आज है परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और साथ ही है आज व्यक्तिगत अधिकार दिवस भी, जो कि वैसे तो US में मनाया जाता है, लेकिन अगर हम यूं कहें कि ये तो सभी का दिवस होता है, हर व्यक्ति का, तो हर व्यक्ति क्यों ना मनाए। और आज है विश्व झील दिवस, झील यानी कि लेक डे। अब लेक की बात हम जरूर करेंगे कार्यक्रम में आगे, देखते हैं कहाँ हमें वक्त मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अब हम आ जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि नेशनल लेवल पर हम मना रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, क्योंकि 1905 में भारत के महान हॉकी खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था आज ही की तारीख में। इसीलिए भारत में ये दिन हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खेल और शारीरिक गतिविधियों को जीवन का हिस्सा बनाने के संदेश के साथ इस दिन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों जैसे कि खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। और हमारे देश में एक और दिवस भी है, तेलुगु भाषा दिवस। भारत में महान तेलुगु कवि और समाज सुधारक गिडगु वेंकट राममूर्ति की जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए इनमें से कुछ दिवसों के ऊपर हम थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम में आगे। फिलहाल आप सभी के लिए खेलों से संबंधित ये गीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

दंगल फिल्म का टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना, दलेर मेहंदी और साथियों की आवाजों में। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं, हम हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, जो कि पेश किया जा रहा है आप सभी के लिए आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया द्वारा।

करके याद वो अपनी माटी, तोड़ दे दुश्मन की हर पार्टी। ये जो लाइन है ना, यानी खिलाड़ी का अपनी मिट्टी, चाहे वो कुश्ती का अखाड़ा हो, हॉकी का मैदान हो या क्रिकेट की पिच, उसके प्रति जुड़ाव और सम्मान को दर्शाती है। और खेल दिवस पर ये याद दिलाती है कि एक खिलाड़ी की असली पहचान उसकी जमीन और उसकी जड़ों से ही होती है। खिलाड़ी की असली लड़ाई सिर्फ विरोधी से नहीं, बल्कि खुद के डर और आलस से होती है। खेल में तकनीक के साथ साथ किलर इंस्टिंक्ट यानी जीतने का जज्बा और अनुशासन कितना जरूरी है, ये गीत उस थॉट को भी रीइन्फोर्स यानी कि मजबूत करता है। और दिलेर मेहंदी की दमदार आवाज में जब थकना मना है, रुकना मना है का भाव आता है, तो वो खिलाड़ी की रोजाना की ट्रेनिंग के दर्द को भी बयान करता है। सुबह 4 बजे उठना, पसीना बहाना, चोटिल होना और फिर से खड़े हो जाना, ये गाना उस कड़े संघर्ष को सेलिब्रेट करता है जो कि कैमरे के पीछे एक खिलाड़ी रोज जीता है। जी हाँ, आप लोगों को लगता होगा कि ये सब कुछ कितना आसान होता है ना, जो हमें फिल्मा करके दिखा दिया जाता है, लेकिन इसके लिए भी जो हमारे नायक होते हैं वो मेहनत करते हैं, और जिन नायकों के ऊपर वो फिल्में बनी होती हैं उन्होंने तो कितनी मेहनत की होती होगी, ये सोचिए।

तो दंगल का मतलब सिर्फ कुश्ती लड़ना नहीं बल्कि जीवन और खेल के मैदान में आने वाली हर चुनौती को पछाड़ करके विजेता बनना है, और यही इस राष्ट्रीय खेल दिवस का असली संदेश भी है।

चक दे इंडिया का टाइटल सॉन्ग आपने सुना। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला है और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो जब भी राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी खेल होते हैं तो हमारा दिल ज़रूर धक धक करता है। सिर्फ एक क्रिकेट के लिए ऐसा हो ऐसा नहीं है, हमारे और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं और हमें बड़ा ही प्राउड फील होता है जब हमारी टीम वहाँ जीत करके आती है। तो हमने पहले ही कहा कि खेलों में हारना जीतना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हम उस खेल को किस भावना से खेलते हैं। और श्रोताओं, आज भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है और ये दिन एक बार फिर से बता दूं आपको, महान हॉकी खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और आज खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक विकास और राष्ट्रीय गौरव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन और अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ओलंपिक्स, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा दी है। और श्रोताओं, आज हम बात भी करेंगे आप लोगों से, तो हो सके तो इसी विषय पर बात कीजिएगा कि बचपन में आपके कौन कौन से पसंदीदा खेल रहे, चाहे वो खो खो हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, हम तो वो काली डंडा भी खेलते थे पेड़ों के ऊपर चढ़ करके, उतर करके, एक दूसरे को पता नहीं वो डंडे वंडे से छूते थे, क्या करते थे अब तो मैं भूल भी गई हूँ, हम पिट्ठू भी खेलते थे और भी बहुत सारे गेम्स जो कि आजकल के तो शायद बच्चे जानते भी नहीं कि हम लोग वैसे वाले गेम्स खेलते थे। और स्टापू, हाँ उसे कैसे भूल सकते हैं। तो फ़ोन ज़रूर कीजिएगा 7018-117-091 पर, और अगर कॉल नहीं करना चाहेंगे तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं इसी नंबर पर, अपना नाम के साथ मैसेज कर दीजिएगा। क्या कहना चाहते हैं आप खेलों के बारे में। और अगर चाहते हैं कि खेलों के वो जो रूप स्वरूप हैं वो वापस आएं, तो क्या अपने बच्चों के साथ उन खेलों के बारे में कुछ साझा करते हैं आप? क्या अपने बच्चों को खेलों के प्रति उत्साहित करते हैं कि वो बाहर जाकर के गेम्स खेला करें, चाहे वो स्कूल में हो या कहीं पर भी हो, या अपने घर के आसपास मैदान में ही बच्चे क्यों ना खेल रहे हों, या उन्हें कहते हैं कि भाई तुम जल्दी से घर आ जाओ और वहाँ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता पिता कई बार डरते भी हैं ना कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो इससे अच्छा है कि बच्चों को घर ही में बिठा लिया जाए। क्या कहना है आपका, उस विषय पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। और ये जो गीत आ रहा है ना आप सभी के सामने, ये कुछ गीत ऐसा है कि देखिए, एक वो जमाना था कि जब लोग घर के देसी घी और चने का सत्तू खा करके बड़े हुए, लेकिन आज भी उनकी हड्डियों में उतनी ताकत है। और आज की जो पीढ़ी है वो जो है वो नशे पत्ते में पड़ती चली जा रही है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो अपने शरीर का क्या कर रहे हैं। इसीलिए ये जो खेलो इंडिया या फिर राष्ट्रीय खेल दिवस ये जो हम मना रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना खेलो इंडिया का, इसीलिए आया है क्योंकि बच्चों का जो दिमाग है ये दूसरी तरफ लग सके, और जब खेल करते हैं, कसरत करते हैं, उसमें पसीना बहाते हैं खेलों में, तो हमारा जो दिमाग है वो इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। और गुरदास मान जी क्या कह रहे हैं इस गीत में, आइए सुनते हैं।

तो श्रोताओं, हमें कॉल्स आना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम श्रोताओं को एक बार फिर से बता देते हैं कि जब गीत चल रहा हो तो कोशिश कीजिएगा, जैसे ही गीत खत्म होने वाला हो उस वक्त कॉल कीजिएगा।

और इस एक गीत में ही इन्होंने इतनी सारी बातें आपसे कह दी कि वो एक एक बात आज के सिनेरियो में अगर सोची जाए तो बिल्कुल सच है। और मुझे तो एक बात पे बहुत हंसी आ रही थी कि तेल सरों दा मुश्क मारदा जल लालान देने, यानी कि आज देखो समय कितना बदल गया है। हमारे माता पिता ना हमारे सर में अच्छे तरह से तेल की मालिश किया करते थे कि जो हमारे हमारा दिमाग है वो सही रहेगा और बाल भी बड़े अच्छे से चमकदार बने रहेंगे, लेकिन आज हमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और हम जेल वेल लगाने के चक्रों में पड़े रहते हैं। ताकि बाल हमारे खिले खिले से दिखें और बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हम चिपड़ू चिपड़ू से लग रहे हैं। खैर, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ आप हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। श्रोताओं, बात कर रहे हैं हम खेलों के बारे में और खेलों के विषय पर अभी ही कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी खेलो इंडिया डायलॉग के दौरान कहा कि भारत को ओलंपिक के आधे से भी कम खेलों में हिस्सा लेने की कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा और अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स में कई खेल होती हैं लेकिन भारत उनमें से आधे खेलों में भी हिस्सा नहीं लेता, जिससे कि हम पदक तालिका के एक बड़े हिस्से से बाहर रह जाते हैं। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की जो खेलेगा वो खिलेगा, इसका एक नया मंत्र देते हुए कहा कि खेल का मतलब सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं बल्कि व्यक्तित्व और देश का गौरव बढ़ाना भी है। और सरकार का जो लक्ष्य है वो 2036 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तलाश करके और 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट चलाना है। और उनका विजन सिर्फ पदक जीतना नहीं बल्कि खेलों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बनाना भी है। और जो श्रोता पहले कॉल कर रहे थे अब वो कॉल कर सकते हैं, अब हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा ध्यान आप भी रखा करें कि जब गीत होता है तो उसके मिड में अगर आप कॉल करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कि हम आपका फ़ोन उठाएं नहीं उठाएं, उतना हमें भी समझ नहीं आता। तो हमें लगता है कि श्रोताओं जो बाकी श्रोता बड़े ध्यान से वो गीत सुन रहे होते हैं उनके मनोरंजन में थोड़ी सी बाधा पड़ती है। चलिए आगे बताते हैं आपको कि खेलों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। नियमित खेलकूद से आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम करने में भी सहायता मिलती है। खेल व्यक्ति को हार और जीत दोनों को स्वीकार करना सिखाते हैं। मैदान पर मिली हार खिलाड़ी को अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। और भी बहुत सारी बातें हैं हमारी खेलों को लेकर के आगे कार्यक्रम में जरूर करेंगे। फिर से एक बार बढ़ चले हैं हम गीत की ओर। और ये गीत भी है चक दे इंडिया फिल्म का, हेमा सरदेसाई की आवाज़।

हेमा सरदेसाई की आवाज़ में अभी आपने सुना चक दे इंडिया फिल्म का एक और खूबसूरत गीत। और ये है आपका पसंदीदा चैनल 91.2 FM। तो चलिए फिर आप उठाइए अपना मोबाइल और कीजिए हमको फोन 7018117091 पर। पर पता है ना किस विषय पे बात करनी है आपको आज? अच्छा, तो मुझे लगता है कि एक फोन कॉल

0: आ चुका है हमें, आइए बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्कार
1: जी। नमस्कार नमस्कार जी, क्या हाल है?
0: हम तो ठीक हैं जी, आप बताएं, आप कौन बोल रहे हैं, आपका क्या हाल चाल है, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हूँ।
0: अच्छा जी, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: मतलब आपकी आवाज इको कर रही है।
0: अच्छा, इको कर रही है जी, अब
1: जी
0: आप
1: जी
0: बताएं, अब ठीक है?
1: हाँ अब ठीक है,
0: अब ठीक आ रही है। अच्छा जी,
1: ठीक है, थैंक यू। तो
0: जी,
1: आज
0: बताने के लिए इको कर रही है। हाँ जी।
1: आज पहले तो आज बहुत सारे लोग दिवस मना रहे हैं आप, पर सबसे पहले मैं खेल दिवस के ही ले लेता हूँ, क्योंकि तो आज एक महान हॉकी के जादूगर थे, उनका महान जो ध्यानचंद जी, उनका वर्ष है, जन्म दिवस है, तो उनके बारे तो जितना भी कहा जाए उतना ही कम है
0: जी।
1: देखिए, इतना मतलब कि छोटी सी उम्र में, मतलब वो सेना में भर्ती हुए 16 साल की उम्र में।
0: अच्छा,
1: हाँ 16 साल की उम्र में भर्ती हुए आर्मी की सेना, भारतीय सेना में। तो उन्होंने 16 साल की उम्र में खेला शुरू किया
0: जी।
1: खेला भी वही, ज्वाइन वही किया, उस खेला शुरू वही से किया, और भारत को चार चार बार, एक बार चार चार बार मतलब स्वर्ण जिताया उन्होंने, गोल्ड मेडल जिताया।
0: वैसे ये
1: पहले तो
0: जानकारी हमने देनी थी श्रोताओं को, चलिए अच्छा है आपके माध्यम से आपने बता दिया सभी को।
1: पहले तो 1928 में दी गई थी एम्स्टरडम में
0: जी,
1: और 1932 में दी थी लॉस एंजल्स में
0: जी,
1: 1936 में दी थी बर्लिन में
0: जी,
1: जहाँ के वो एज ए कैप्टन भी थे। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में 1000 से ऊपर गोल भी किए।
0: अच्छा जी।
1: तो मैं समझता कि उस वक्त जबकि हमारे पास सुविधाओं का अभाव था, सुविधाओं का अभाव था, कहने को तो हमारे मतलब नेतागण बहुत अमीर थे
0: जी,
1: पर प्लेयर गरीब होते थे, ना ढंग से शूज होते थे, ना ढंग से जुराबे होती थी, और ना उनके इक्विपमेंट होते थे। और उस वक्त अगर ऐसी उपलब्धि की जाए तो जितने उसको याद किया जाए उतना कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी भी गेम यही थी।
0: अच्छा, आप भी गेम, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आप अपने बचपन में कौन कौन से गेम्स खेलते थे उसके बारे में बताएं। हाँ, हम मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जितनी भी बातें आपने कही बहुत अच्छी बात बताई है सभी श्रोताओं को, आप अपने बारे में कहिए।
1: देखिए, वैसे तो आदमी की जिंदगी खेल है
0: जी। हाँ बिल्कुल सही बात।
1: आप तो उस जिंदगी में आदमी खेलता जीतने के लिए खेलता है, बट मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो सारी उम्र खेलता खेलते खेलते लास्ट में वो जी हार जाता है गेम।
0: अच्छा,
1: वो हारता भी मतलब जीतने के लिए खेलता है, सारी उम्र जीतने के लिए खेल रहा है, उस एम्बिशन है कि मैं इसको भी हासिल करूँ, उससे भी हासिल करूँ, वो भी खेल है, जिंदगी संघर्ष है। तो खेलते खेलते वो हार जाता है और उसका अंतिम होता है। तो क्या मतलब कि आदमी को धैर्य रखना चाहिए हर चीज के लिए। और जिस तरीके मैं आज देख रहा था कि हमारे नेपाल में कुछ लोग मतलब उस त्रासदी में या जितना भी मतलब वो एथिक सेंटर था वहाँ ऐसा ऐसा हुआ
0: जी।
1: तो उसमें लोग मरने के बाद भी उन लोगों उनके लोग हाथों से गहने और ऑर्नामेंट छीन रहे थे।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: तो हम लोगों में इंसानियत कहाँ बची है? तो कड़े मतलब मैं एक चीज बोलता हूँ, देखिए मैडम कि एक इंसान ही हम बोलते हैं कि सबसे अकलमंद है
0: जी।
1: पर मैं समझ रहा हूँ कि हम इंसान अकलमंद नहीं, हम सिर्फ जानवर अकलमंद है। देखिए, एक चींटी या कोई भी पक्षी ले लीजिए, शेर ले लीजिएगा, गाय ले लीजिएगा, वो जब उसको भूख होगी ना तभी वो घास खाएगी।
0: हाँ जी।
1: या शेर है, शेर मानो कि जब भूख होगी जंगल में बेकार बैठा रहेगा बेला, तो जब वो भूखा होगा तभी शिकार करेगा। पर आदमी सारी उम्र कमाता है और उसको कमाता कमाता इतना कमाता है कि बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर देता है, पर उस इंसान आदमी की भूख नहीं खत्म होती है।
0: चलिए, वैसे तो हम बात खेलों की कर रहे हैं, लेकिन आपने अब ये टॉपिक छेड़ा ही है तो इसमें मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। वो ये कि देखिए, चींटी और पक्षियों की बात आपने की ना, तो अब कई दिनों से मैं भी बर्ड वॉचिंग कर रही हूँ और बहुत सारे जो पंछी पक्षी हैं वो मैं देखती हूँ। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं अपनी टीन के ऊपर कुछ रोटी फेंकती हूँ, हर रोज़ डालती हूँ टुकड़े टुकड़े करके, तो जब वहाँ पक्षी आते हैं ना, तो वो अकेले नहीं आते, वो सारा अपना झुंड लेकर के आते हैं साथ में। वो चाहते हैं कि अगर हम अपना पेट भर रहे हैं तो बाकी हमारे साथी भी भरें, तो ऐसी भावना उनमें होती है। और अगर वो कोई अकेला आया तो वो चूं चूं करके बाकी सबको बुला भी लेता है। चींटियों में भी यही भावना होती है, सब जब चलती हैं तो सब इकट्ठी चलती हैं, है ना। शायद हम लोगों में कहीं वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। जी,
1: पर इंसान में ये फर्क होता है कि आदमी जितना ताकतवर होगा उस बोलेगा जो भी है मैं इकट्ठा कर लूँ।
0: चलिए, आप अनिल जी है ना आप?
1: जी जी।
0: हाँ, तो अनिल जी आप ये बताएं कि कौन से गेम्स खेलते थे आप बचपन में?
1: पहले तो मैं हॉकी खेला करता था, हॉकी।
0: अच्छा, आप बोलते हैं हॉकी मेरा भी फेवरेट गेम था, और मैं भी कॉलेज की तरफ से भी खेलने गई थी, और वो जो हॉकी स्टिक है ना वो आज तक भी मेरे पास रखी हुई है घर में।
1: तो मैडम एक बात दुख है मुझे, मुझे एक गलानी होती है कि देखो आज के जो जनरेशन है ना, उसको हॉकी के प्लेयर के नाम का नाम पता नहीं होगा, इवन कैप्टन का नाम भी नहीं पता होगा इंडियन टीम का। बट जो बाकी जो क्रिकेट है, क्रिकेट के नाम प्लेयर को नाम पता होगा, उनके कैप्टन का नाम पता होगा, उनके बाप दादाओं के नाम, उनकी पूरी हिस्ट्री ले लो उनसे।
0: चलिए अनिल जी, ऐसा है ना कि ये सिर्फ हॉकी के साथ ही नहीं है विडंबना, बाकी सभी खेलों के साथ भी है। फुटबॉल है हमारा, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, बाकी और भी बहुत सारी गेम्स हैं जिनके साथ ऐसा है। अब क्रिकेट का देखिए क्रेज ही इतना ज्यादा है कि ये बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल,
1: अब उसको हम लोगों ने कमर्शियलाइज कर दिया है।
0: हाँ जी,
1: तो इसको मतलब कि इसी कारण को हम ओलंपिक आप बोले पिछड़ते हैं और पिछड़ रहे हैं
0: जी।
1: हमारी जो इवेंट्स हैं तो हम उन इवेंट्स के फॉलो नहीं कर पाते। तो अब ओलंपिक्स में इतनी इवेंट्स होती है छोटे छोटे, वो हम लोग उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते।
0: तो पार्टिसिपेट हम करें उसका समाधान भी तो होना चाहिए ना, आप बताएं अपनी तरफ।
1: समाधान तो वही है ना कि कहने का मतलब खेलो। तो देश गरीब है, एक बार शुरू में एक टैग लगा दीजिए कि देश गरीब है। अब हमारे पास सुविधाओं का अभाव है, आज भी हमारे पास सुविधाएं नहीं है, अच्छी कोचिज नहीं है।
0: चलिए, अब इस कार्यक्रम के माध्यम
1: सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया कहाँ से मिली?
0: सोने की चिड़िया थी सर। अब कोशिश करेंगे हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ये जो बातें होती हैं ना, ये प्रशासन तक ज़रूर पहुँचें, और ख़ास करके हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में तो वाकई में जो खिलाड़ी हैं उनके पास थोड़ा सा सुविधाओं का अभाव है, लेकिन फिर भी देखिए, अब आपने खुद ही कहा कि मेजर ध्यानचंद जो जी जो थे उस वक्त कितना अभाव था ना हर एक चीज़ का, लेकिन फिर भी वो उभरते हुए, वो मतलब जाने माने खिलाड़ी बन कर के उभरे। तो ऐसी ही भावना चाहिए ना खिलाड़ियों में भी, चाहे कितना भी अभाव हो।
1: देखिए उस वक्त इनको जर्मन के वो जो थे हिटलर, इन्होंने ऑफर किया था कि हमारे जर्मन से खेलो, पर इन्होंने मैसे इसको ठुकरा दिया था
0: थी उनके मन में भी, है ना। और रेडियो गुंजन से धर्मशाला से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको कार्यक्रम में भी जरूर, हम चाहेंगे कि आप जरूर बात करें, और आपके पास हर एक विषय पर बहुत अच्छी नॉलेज होती है, इस बात का हमें हमें बहुत खुशी है जी। धन्यवाद
1: जी,
0: धन्यवाद। दोस्तों, ये थे अनिल बलोरिया जी, जो कि हर विषय पर हमसे बात करते हैं, और हमें खुशी होती है कि इनके पास नॉलेज का भंडार है। और हमें ऐसा लगता है कि जब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं और जब हम विषय तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये सर्च भी करते होंगे, और ताकि ये हमसे ठीक तरह से बात कर पाएं। देखिए, हमने आप तक कुछ बातें रखनी थी अभी, लेकिन ये पहले ही रख कर चले गए और इन्होंने बता दिया आपको कि मेजर ध्यानचंद जी जो हैं वो किस किस परिस्थितियों से गुजर करके वहाँ तक पहुँचे थे। और जब उन वो खेलते थे ना, तो हॉकी के साथ वो जो बॉल थी ना, वो चिपकी हुई रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई मैजिक उन्होंने कर दिया। और इस बात पर कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई, उनकी छानबीन भी बड़ी हुई, लेकिन ऐसा कुछ निकल करके कभी सामने नहीं आया। तो ऐसे थे हमारे वो खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और अब जब इन्होंने झील की बात कर ही दी है, तो आपको ये भी हमने बता दिया था कार्यक्रम में कि आज विश्व झील दिवस भी है। तो एक गीत सुनते हैं और उसके बाद करेंगे बात झीलों के बारे में।

फिल्म का नाम झील के उस पार। जी हाँ, इस फिल्म से सुन रहे थे आप ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, इस समय हम प्ले कर रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल 91.2 एफएम से, और मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। दोस्तों, प्रकृति का नियम यही है कि जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है

के ऊपर बर्फ पिघलने से जो झीलें बनती हैं उन्हें ग्लेशियर लेक कहते हैं। वे दिखने में जन्नत जैसी नीली और खूबसूरत होती हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में इन्हें ग्लेशियल लेक आउटबर्स फ्लड यानी GLOF यानी वाटर टाइम बॉम्ब कहा जाता है। इन झीलों की दीवारें कमज़ोर मिट्टी और बर्फ़ की होती हैं। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग से पानी बढ़ता है या कोई एवलांच बर्फ़ का तूफान इसमें गिरता है तो ये झीलें फट जाती हैं।

0: केदारनाथ की 2013 की त्रासदी और हाल ही में चीन नेपाल बॉर्डर पर हुई तबाही इसी खूबसूरत झील के फटने का नतीजा थी। इन झीलों के शांत पानी के नीचे हजारों टन जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से दबी होती हैं। और ये झीलें अचानक सोडा की बॉटल की तरह फटती हैं और बिना किसी शोर के हवा में अदृश्य जहरीली गैसों को फैला देती हैं।
1: असकी विजय

साल 1966 में लेक न्योज़ के अचानक फटने से एक ही रात में आसपास के 1700 से ज़्यादा लोग और हजारों जानवर सोते सोते ही मारे गए थे, जबकि पानी में एक बूंद बाढ़ भी नहीं आई थी।

श्रोताओ, कुछ चीज़ें ऐसी रहस्यमयी होती हैं जो अचानक इंसानों और बस्तियों को निगल सकती हैं या खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। जमीन के अंदर चूने की चट्टाने यानी लाइमस्टोन होने के कारण कई बार झीलों के अचानक के नीचे अचानक गहरे कुएं या फिर सिंक होल बन जाते हैं। ऐसे में लाखों गैलन पानी के साथ नाव, घर और आसपास की चीज़ें पल भर में पाताल में समा जाती हैं।

जी श्रोताओं, अभी आपने सुना सतिंदर सरताज को, ये गीत था झील। और झील की व्यथा कथा इस गीत में कही गई, और सच में यकीन मानो मुझे यहाँ पर बैठे बैठे गूज बम्स आ रहे थे सुन करके ये गीत। अगर आप भी शुरू से कार्यक्रम सुन रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ कि कुछ ऐसा ही मन का हाल आपका भी होगा, क्योंकि उस त्रासदी में मारे गए लोग केवल वो लोग नहीं थे जिन्हें हम नहीं जानते, बल्कि वो भी हमारे अपने ही थे। इंसानियत के नाते अगर मैं कहूँ तो कुछ पलों के लिए तो हमें लगता है ना कि आखिरकार ये क्या हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम रोज़ सुबह दुआएं करते हैं, केवल अपने घर के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, कि हम ठीक रहें, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो ठीक रहें, भाई बंधु ठीक रहें, बल्कि सारे संसार के लिए दुआएं मांगी जाती हैं उस वक्त। ये कहा जाता है कि सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड लेक डे है और हम अक्सर झीलों के किनारे बैठ करके रोमांटिक गाने गाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकृति की ये खूबसूरत आंखें कभी कभी खौफ का सैलाब भी ला सकती हैं। जी हाँ, जिन झीलों को देख करके हमारा दिल खुश होता है, पहाड़ों पर वही झीलें वाटर टाइम बम बनकर बैठी हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज ये खूबसूरत झीलें कब फट जाएं और नीचे बसे गांवों को निगल जाएं, कोई नहीं जानता। यानी जो सुकून देती है वही संहार भी कर सकती है। तो आज के दिन झीलों को सहेजने का संकल्प लीजिए, ताकि प्रकृति का ये संतुलन बिगड़ने ना पाए। थोड़ा सा रखरखाव अगर होता उस झील का तो शायद ये नहीं होता। अब तो हम यही कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ हो जाती है ना, उसके बाद फिर आंकलन किया जाता है कि अगर ऐसा होता तो ये नहीं होता, हम ये कर लेते तो शायद ये नहीं होता, इतनी बड़ी तबाही नहीं आती। परंतु उस तबाही के बाद भी क्या, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं जो कि ये दिखा रहे हैं कि हमारी मानवता, आत्मीयता कितनी मरती गई है, मर गई है बिल्कुल ही। जो पीछे रह गए हैं वो ये सोच रहे हैं कि उस त्रासदी में हमें कैसे फ़ायदा मिल जाए, हम कैसे वहाँ से सिलेंडर्स इकट्ठा कर लें या लोगों का जो गहना है वो निकाल लें। उन बॉडीज़ को नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन उस पे जितने भी चीज़ें हैं वो सब निकाल रहे हैं। क्यों इतने मर गए हैं हम, हमारी आत्माएं मर गई हैं,

जी, तेरी दुनिया में नहीं कोई हमारा अपना। जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो मन में ऐसे ही भाव आते हैं। बारूद फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और ये गीत उस ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए गाया गया था कि भाई अब ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं बचा है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मिल करके ये कह रहे हैं कि बस अब तुम्हारा ही सहारा है। तो ऐसा वक्त किसी पर ना आए, हम भी यही दुआ करते हैं। हर कोई मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, खेलता रहे। और आज व्यक्तिगत अधिकार दिवस भी है श्रोताओं। सत्रहवीं शताब्दी के अंग्रेजी दार्शनिक जॉन लॉक के सम्मान में, जिनके महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व लेखन ने प्रत्येक मनुष्य के अधिकारों के लिए तर्क दिया था। व्यक्तिगत अधिकार दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो लॉक के जन्म की वर्षगांठ भी है। मानव अधिकार या नागरिक अधिकारों के रूप में किसी व्यक्ति को प्राप्त कोई भी चीज अटूट रूप से उसी की रहती है। और हाँ, लॉक ने स्वीकार किया कि समाज द्वारा प्रदान की जाने वाली सामूहिक सुरक्षा के बदले में मनुष्यों को अक्सर अपने कुछ प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करना पड़ता है। उनका मानना था कि बुनियादी व्यक्तिगत अधिकारों में ये शामिल हैं: जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और सरकार से याचिका करने की स्वतंत्रता। लॉक के विचार उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे जो आगे चलकर के 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रबोधन काल के विचारक बने, लेकिन उनका प्रभाव इससे कहीं अधिक व्यापक रहा। स्पष्ट रूप से उनका प्रभाव यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अन्य कई स्थानों के राजनीतिक क्षेत्र में भी आज भी कायम है, और व्यक्तिगत अधिकार दिवस इसी का उत्सव है।

व्यक्तिगत अधिकार उत्सव तो हम मना ही रहे हैं, और जो मेहनत करता है वो वाकई में अपना अधिकार मांगता भी है।

मजदूर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आर डी बर्मन और साथियों की आवाजों में। और देखिए, केवल अपना हिस्सा नहीं मांगना होता है, दूसरों के काम भी आना होता है। क्योंकि आजकल हम चीजें देख रहे हैं, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम किसी के काम आ रहे हैं। तो कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं अब हम ये गीत। वैसे आपको चलते चलते बता दें कि आज एक और इंटरनेशनल डे है, परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड द्वारा मान्यता प्राप्त एक वैश्विक दिवस है। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के परीक्षणों के विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया का लक्ष्य हासिल करना है।

0: अब अधिकार फिल्म का ये गीत आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। जितना हो सके हमें दूसरों के काम आना ही चाहिए। अपने घर परिवार के बारे में तो हम सभी सोचते ही रहते हैं, लेकिन क्या हम कभी समाज के बारे में सोचते हैं?
1: आप पे निसार।
0: और जितना आप समाज के बारे में सोचेंगे ना, तो आपका घर ही परिवार ऐसे ही सुखी होता चला जाएगा। जी हाँ श्रोताओं, और इसी गीत के साथ हम भी ले लेते हैं आपसे विदा।

जल्दी ही मिलूंगी आपसे मैं फिर किसी दिन इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम में मुझे तकनीकी सहयोग मिला शशि द्वारा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संदीप परमार। तो यूं ही आप एक दूसरे की सहायता करते रहिए, सबके काम आते रहिए और लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे 2 शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने 2 शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है,

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ही है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे 2 शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने 2 शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है,

0: नमस्कार दोस्तों, 91.9 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका। हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपना मनपसंद कार्यक्रम मन संवाद की एक और खास कड़ी लेकर। जी दोस्तों, हर हफ्ते आप सभी सुनते हैं इस बहुत ही खास कार्यक्रम को, बहुत ही खास जानकारियों से भरा हुआ, हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से खासकर जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो इस कार्यक्रम में ये कैसे भूल सकते हैं आप सभी की रुचिका के साथ, तो आप सभी जुड़ते हैं, लेकिन जो खास जानकारियां आप सभी तक पहुंचाते हैं, जो एक बहुत ज्यादा मेहनत जिनकी रहती है, प्रियाशी जी, तो आइए उनका भी स्वागत करते हैं कार्यक्रम में, क्योंकि वही इतनी मेहनत से आप सभी तक ये ढेर सारी जानकारियां पहुंचाते हैं। तो मैम, स्वागत है आपका हमारी इस खास बातचीत में।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं आप, और उम्मीद करते हैं हमारे दोस्त भी अच्छे होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो मैम, जैसे कि हर हफ्ते हम अपने दोस्तों के लिए कुछ खास जानकारियों के साथ जुड़ते हैं, तो इस बार भी कुछ एक खास बातचीत जो है वो अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि अक्सर जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि हम नजरअंदाज कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो वहीं हम बात करें, जैसे हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन साथ ही कई बार हमारी जिंदगी में हावी हो जाते हैं हमारी भावनाएं
1: जी।
0: तो इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हमारे दोस्तों को ये बताइए कि इमोशनल हेल्थ को हम किस तरह से समझ सकते हैं और मेंटल हेल्थ को हम किस तरह से समझ सकते हैं।
1: देखिए, आमतौर पर जो एक लेमन टर्म पे हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में लोगों की जो धारणाएं हैं मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को लेकर, वो कुछ ऐसी होती है कि लोगों को लगता है इमोशनल हेल्थ इज अबाउट द फीलिंग्स, द इमोशंस, हम जो महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ इज मोर अबाउट द थॉट्स, इट्स मोर अबाउट द कॉग्निशन, कि हम जो भी बिहेवियर कर रहे हैं वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि मेंटल हेल्थ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टर्म है। मेंटल हेल्थ अपने आप में बहुत सारी चीजों को कंप्राइज करता है, जैसे कि हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी, हमारे मूड, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो एक डिसीजन मेकिंग है, हमारा जो सेंस ऑफ जजमेंट है, जो एनालिटिकल थिंकिंग है, ये सारे ही पहलुओं को मिलाकर मेंटल हेल्थ बनता है। इमोशनल एस्पेक्ट सिर्फ इसका एक छोटा सा भाग है। तो बेसिकली इमोशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ के अंडर ही आती है।
0: तो मैम, ये जो हमारी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ है, तो इमोशनल हेल्थ क्या हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है?
1: बिल्कुल।
0: किस तरह से?
1: इमोशनल हेल्थ ऐसे समझिए रुचिका कि हमारे इमोशंस जो है ना, साइंटिफिकली बताते हैं, हमारे इमोशंस जो हैं वो हार्मोन्स डिराइव करते हैं। हमारे हार्मोन्स क्या हैं? हम वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। तो हमारे इमोशंस या भावनाएं, जो भी उनमें जो भी कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रहा है। और हार्मोनल चेंजेस क्यों हो रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड को कोई तो मैसेज मिल रहा है, कोई तो कमांड मिल रही है ब्रेन से, जिसकी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स या तो वो पर्टिकुलर हार्मोन को का जो सिक्रीशन है उसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो ये जो भी इम्बैलेंस हो रहा है हार्मोनली, जो हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसका सीधा कनेक्ट है ब्रेन की कमांड से। और ब्रेन को वो कमांड कहाँ से मिल रही है? माइंड से। क्योंकि माइंड हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आए हुए सारे इनपुट्स को प्रोसेस करता है, उसको मीनिंग देता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं ना, देर इज रॉ डेटा देन देर इज एन
0: इंफॉर्मेशन।
1: तो डेटा में जब मीनिंग ऐड किया जाता है तब वो इंफॉर्मेशन बनती है
0: जी।
1: ये काम कौन कर रहा है हमारे अंदर? हमारा माइंड। तो इस तरीके से मेंटल हेल्थ और हमारा एक जो सोशल एस्पेक्ट है ह्यूमन बींग्स का, कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन रह रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है, ये सब इम्पैक्ट डालते हैं हमारे मेंटल हेल्थ पर। और मेंटल हेल्थ से इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे हार्मोन्स, यानी कि इमोशनल हेल्थ।
0: तो मैम, अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें, तो ज्यादातर जो अगर हम कहें कि जिंदगी पे हावी होने वाली चीजें हैं तो वो हम किसे मान सकते हैं, मतलब क्योंकि अक्सर हम जब भी सुबह से लेकर शाम तक अगर हम बात करें तो जो मेंटल हेल्थ है उसके तो हम खैर वो एक मतलब कि पूरे प्रोसेस है, लेकिन इमोशंस हर बात से जुड़े होते हैं, छोटी छोटी सी बात से, चाहे हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं या फिर कोई डर, मतलब बहुत सारे इमोशंस जो है हमारे सुबह से लेकर शाम तक हमारी जिंदगी में रूटीन में चलते हैं, तो यहाँ ज्यादा इम्पैक्ट किस तरह से रहेगा?
1: देखिए, इमोशंस तो हमारे इंसान होने का एक प्रूफ है।
0: जी
1: लेकिन अफसोस की बात यह है कि सोशल कंडीशनिंग की वजह से हमने इमोशंस को कमजोरी का नाम दे दिया। जो भी व्यक्ति इमोशंस को एक्सप्रेस करता है हम उसको कमजोर बोल देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और देखिए ये हुआ भी क्यों होगा, ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी कि अगर सामने वाला व्यक्ति भावुक हो रहा है तो हम उसके इमोशंस का कैसे ध्यान रख सकते हैं या हम उसको क्या ऑफर कर सकते हैं। यू नो कि कोई भी चीज जो इंसान को अनकंफर्टेबल महसूस कराती है वो इंसान या तो उस चीज को समझने का प्रयास करता है या फिर वो उस चीज को अवॉइड करने का प्रयास करता है। जिन लोगों ने समझने का प्रयास किया वो लोग एम्पेथेटिक है ना, वो ध्यान रखते हैं, उनसे लोग जुड़ते हैं, उनसे लोगों को बात करने का मन करता है, अपनी परेशानियां उनके पास लेकर जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अवॉइड करने वाला रास्ता चुन लिया वो ही लोग दूसरे व्यक्ति जब भावुक होते हैं उनको कमजोर का टैग दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक आयरनी है जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, जबकि ये सच नहीं। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इमोशंस तो हर प्रकार के इमोशंस हमारे अंदर है ना
0: जी,
1: चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो जेलसी हो, और ये इमोशंस जो है ना हर व्यक्ति महसूस करता है।
0: बिल्कुल।
1: कोई व्यक्ति अगर अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा वो एक सेकेंडरी बात, इमोशंस और इमोशनल एक्सप्रेशन ये दोनों भी बहुत अलग अलग होते हैं। लोगों को लगता है ये एक है, इमोशंस तो हर कोई महसूस करता है लेकिन एक्सप्रेस सब अलग अलग प्रकार से करते हैं, या कुछ लोग नहीं करते तो वो सप्रेस करके रखते
0: हैं।
1: तो कुछ ऐसा है हमारे डेली लाइफ में, जो आप पूछ रहे ना कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, वो ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है सोशल कंडीशनिंग की वजह से।
0: जी बिल्कुल सही, मैम ने बहुत ही सही बात कही है दोस्तों, क्योंकि इमोशंस जो है हमारी एक नेचुरल सी चीजें हैं, है ना, तो ये हमारे मतलब लाइफ का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो सोसाइटी की बात है कि लड़के हैं तो वो रो नहीं सकते, उन्हें वो अपना इमोशन जो है वो दबाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी कमजोरी में इन्वॉल्व हो जाता है। अब लड़कियों की बात करें तो लड़कियों भी को भी कहीं ना कहीं उन बातों से जो है वो बताया जाता है कि ज्यादा मतलब सिचुएशंस के हिसाब से देखा जाए तो वो टैग किया जाता है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, लेकिन इमोशंस अगर हम रोएंगे नहीं, कई बार कहते हैं ना रो कर जो है वो कोई टेंशन अगर दिमाग में चल रही है, कोई स्ट्रेस चल रहा है तो वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए ठीक ही है।
1: डेफिनेटली देखिए इमोशंस क्या है, इमोशंस एनर्जी है
0: जी,
1: है ना, दिखती नहीं है, खत्म नहीं होती, ना वो जगाई जा सकती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू दी अनदर। हमें इमोशन कोई भी कब आएगा, महसूस कब होगा, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने होगा और उससे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा मिलेगी।
0: बिल्कुल।
1: वो किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, उसके शब्दों के फॉर्म से मिल सकती है, उसके जेस्चर्स के फॉर्म में मिल सकती है, या उसके एब्सेंस से चुप रहने के फॉर्म में भी मिल सकती है। यानी कि हाउ वी आर रिलेटिंग विद दी अदर पर्सन इन टर्म्स ऑफ वॉट दे आर मेकिंग अस फील, वॉट दे आर ऑफरिंग अस, बेस्ड ऑन वॉट दे आर ऑफरिंग अस वी फील सर्टेन थिंग्स। तो वो फीलिंग क्या है, वो है एनर्जी।
0: एनर्जी बिल्कुल।
1: तो बेसिकली किसी व्यक्ति के होने से या ना होने की वजह से हम जो भी महसूस कर रहे हैं वो हमारे इमोशंस हो गए। अब वो एनर्जी है, अब हमें हमारे अंदर तो वो एनर्जी आ गई, पर वो एनर्जी अगर हमारे अंदर से बाहर नहीं जाएगी या कहीं दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगी तो क्या होगा, वो हमारे अंदर ट्रैप्ड रहेगी, जिसके कारण से हमारे अंदर बहुत सारे इम्बैलेंसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते रहना चाहिए, सप्रेशन नहीं करना चाहिए। सप्रेशन तो सबसे बड़ा पनिशमेंट है जो आप खुद को दे रहे हो विदाउट एनी रीजन।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों इसके बाद हम और भी इसके बारे में जानेंगे, खास करके आज हम इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जहां इमोशनल हेल्थ की बात है तो इमोशंस तो उससे जुड़े ही हैं, तो किस तरह से वो एक तरह से हावी होते हैं या किस तरह से हमें उसे जो है मतलब कि एक तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह से क्या करना है, वही बातें आप सभी जानेंगे। खैर एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत, बहुत ही खास कार्यक्रम के साथ।

0: दोस्तों, इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और प्रियशी जी के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। इस बहुत ही खास बातचीत कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की और आप सभी इस समय एंजॉय कर रहे हैं। तो मैम, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की, तो अक्सर जो आज का समय है तो हम युवाओं की ही बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो राह से भटक रहे हैं वो आज के युवा ही हैं। कहीं ना कहीं सभी की बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ कुछ हद तक जो है वो चीजें हमारे सामने आती। तो कहीं हमारी स्टडी का जो है वो प्रेशर है, तो कहीं हमारे करियर से रिलेटेड बच्चों को प्रेशर है, युवाओं को प्रेशर है, तो वही उसी उन्हीं सब बातों के चलते कहीं ना कहीं फैमिली का भी है। कई बार पेरेंट्स की लड़ाई झगड़े भी बच्चों की जो इमोशंस पे है जो हावी हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये सारी चीजें जो है वो बच्चे सोचते रहते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो सोचना उनका ओवरथिंकिंग में जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो वो किस तरह से हमारे इमोशंस को बिगाड़ता है, जो हमारी ये ओवरथिंकिंग है वो किस तरह से हमारी जिंदगी के जो इमोशंस हैं, जो हमें रेगुलेट कहा जाता है कि रेगुलेट करते रहना चाहिए, तो वो किस तरह से उन्हें बिगाड़ देता है उस प्रोसेस को, और उसे अगर हम सही करना चाहें तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं।
1: देखिए रुचिका, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रश्न को प्रस्तुत किया है
0: जी।
1: पर उससे पहले हम एक बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं
0: जी,
1: कि आज के जो युवा हैं वो ही नहीं है जो भटके हुए हैं
0: जी।
1: अगर आज का युवा भटका हुआ है तो वो क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वो इसलिए भटके हुए हैं क्योंकि उससे पहले की जो जनरेशन रही है या जो पेरेंट फिगर है आज के टाइम पे
0: जी,
1: वो खुद भटके हुए।
0: बिल्कुल
1: है ना। देखिए, अगर पेरेंट्स के अंदर एक सेंस ऑफ अवेयरनेस रहती कि माइंड कैसे फंक्शन करता है और माइंड को लेकर बच्चे को क्या सीख देनी है क्या नहीं देनी है, अगर ये चीजें पेरेंट्स को पता होती तो बच्चा आज का जो युवा है वो ओवर थिंकिंग के ट्रैप में नहीं फंसता।
0: बिल्कुल,
1: कम से कम उनके पास अपने टूल्स और स्किल्स होते कि वो उससे बाहर आ सकते होते। बच्चों के अंदर एक प्रकार का कॉन्फिडेंस होता। अगर आपने एज अ पेरेंट बच्चे को अच्छी स्किल्स दी हैं कि लाइफ में तो चैलेंजेस आएंगे ही, बट उनसे कोप कैसे करना है, क्या मैकेनिज्म्स हैं जो आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगे, जो लाइफ स्किल्स एक्चुअल में है, अगर पेरेंट्स ने उसके ऊपर काम किया होता तो फिर बच्चों को ऐसा नहीं होता आज का जो यूथ है बेसिकली। और ये सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर ही नहीं, इनफैक्ट जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर भी ये बात गौर करने वाली है। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग की। ओवरथिंकिंग बेसिकली क्या है कि आपने एक टॉपिक से कुछ सोचना स्टार्ट किया और वहां से आप जंप करते चले गए टू एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कि ये ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है, फिर ऐसा भी हो सकता है, इसके बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ये तो सिर्फ एक लाइन ऑफ थॉट है। ऐसे ही डिफरेंट पॉसिबल थॉट जो भी होगी उसके लिए भी एक लाइन ऑफ थॉट, एक चेन ऑफ थॉट स्टार्ट होगी, उसी को ओवरथिंकिंग का नाम दिया गया है। कभी कभी इंसान क्या करता है कि एक टॉपिक के बारे में ही बार बार सोचता है, दैट इज व्हेन ओवरथिंकिंग कन्वर्ट्स इनटू वरिंग, कि इंसान एक ही चीज को लेकर अब चिंतित है। तो एक तो हो गया ज्यादा सोचना विच इज ओवरथिंकिंग, और एक हो गया चिंतित यानी कि वरी करना। तो यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है कि उनको कंक्लूजन नहीं मिलता, वरी में कंक्लूजन नहीं मिलता तो वो उसके बारे में सोचते रहते हैं, और ओवर थिंकिंग में इतने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं कि उनके कंक्लूजन कभी खत्म ही नहीं होते। अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग से बचा कैसे जाए या ओवर थिंकिंग से हमारी हेल्थ पर कैसे फर्क पड़ता है,
0: है
1: ना।
0: बिल्कुल,
1: देखिए जब इंसान एन नंबर ऑफ थॉट्स या पॉसिबल थॉट्स के बारे में सोचेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो अपने आप में बहुत डरा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि ये अक्सर ओवर थिंकिंग जो है वो फ्यूचर रिलेटेड होती है। ओवर थिंकिंग का जो नेचर है ना वो फ्यूचर रिलेटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड। वरी जो है, वरी का जो एक नेचर है वो पास्ट ओरिएंटेड भी हो सकता है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड भी हो सकता है, बट ओवरथिंकिंग की पॉसिबिलिटी जो है दैट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। तो जब हमें फ्यूचर पता ही नहीं है, जो चीज हमें मालूम नहीं होती उससे इंसान को डर लगता है, और उस चीज को पता करने की कोशिश में या अपने आप को एक सांत्वना देने के लिए कि नहीं हम जानते हैं क्या होगा, उसके चक्कर में इंसान नेगेटिव से नेगेटिव बात सोचता है, जिससे उनका डर कम नहीं डर और बढ़ जाता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू एंजाइटी। एंजाइटी की अपने आप में जो इस शब्द का जो डेफिनेशन है दैट इज अननोन फियर. सो इट इज द फियर ऑफ अननोन. अब फ्यूचर तो अननोन ही
0: अननोन है बिल्कुल.
1: सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इट विल लीड टू एंजाइटी इश्यूज. और क्योंकि नेगेटिव सर्कमस्टांसिस के बारे में ही इंसान सोच रहा है, कोई ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस नहीं है, अल्टीमेटली क्या होगा दैट एंजाइटी कैन फर्दर लीड टू हैविंग लो मूड. लो मूड देन फर्दर कैन लीड टू डिप्रेशन ऑल्सो. तो ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि एक ही इशू आएगा, एक के साथ दो तीन और इश्यूज आ सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: नाउ कमिंग टू ओवरथिंकिंग को रोका कैसे जाए. देखिए प्रेजेंट में रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है. अपने आप को रियलिटी से कनेक्टेड रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसके लिए आप माइंडफुल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, यानी कि आप अपने माइंड को प्रेजेंट में लाने के लिए हर वो चीज, हर वो संभव प्रयास करें जिससे आपको सहायता मिल सकती है. किसी के लिए पेंटिंग वो जरिया बन जाता है, तो किसी के लिए सिंगिंग. आपके लिए क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना. ऑन द अदर हैंड ओवरथिंकिंग इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी इन द पर्सन. तो यानी कि आप अपने बॉडी को ज्यादा मूव नहीं करा रहे. आप बॉडी को जितना ज्यादा मूव कराएंगे उतना ज्यादा आप थकेंगे. आपका जो एक मेंटल कैपेसिटी है सोचने का वो भी कम होगा, वो भी रिड्यूस होगा और आपको नींद भी बेहतर आएगी. इसलिए बॉडी मूवमेंट या एक्सरसाइजेज या डांस इस तरह की चीजें आपको हेल्प करेंगी. ओवरथिंकिंग में ये भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है कि नॉट एवरी थॉट इज रेलेवेंट. हर एक थॉट एक सिग्निफिकेंट थॉट नहीं होती. तो आप में ये समझ होना, ये समझ को डेवलप करना जरूरी है कि हर थॉट एक सिग्निफिकेंट, एक जरूरी थॉट नहीं है. तो थॉट और एक जरूरी थॉट क्या है, उसके बीच में फिल्टर कर पाना. आप खुद से इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं जैसे कि ये जो थॉट है क्या ये हेल्पफुल है, क्या ये थॉट मुझे ग्रोथ करने में हेल्प कर रही है, क्या ये थॉट मेरे किसी प्रश्न का सही उत्तर दे रही है. ध्यान रखिएगा सही उत्तर. क्या ये थॉट रियलिस्टिक है या मैं इमेजिन कर रहा हूँ. इस तरह के ये जो सवाल है इनको पूछ कर खुद से आप अपने ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं.
0: बिल्कुल सही कहा है दोस्तों मैम ने, क्योंकि जरूरी नहीं होता सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज्यादा थॉट्स जो है वो हमारे माइंड में चलते रहते हैं. लेकिन सबसे खास बात यही है कि उनमें से जरूरी कौन सा थॉट है हमारे लिए. लेकिन जब हम सभी को जरूरी मानकर चलेंगे, बेवजह ही मानकर चलेंगे, तो वो फिर ओवरथिंकिंग का रूप तो एक न एक दिन ले ही लेंगे. तो वो कहीं ना कहीं वो खुद के लिए बीमारियां हम खुद ही क्रिएट करते हैं. ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है. जब हम इस जिंदगी की रियलिटी को जानते हैं तब ये सारी बातें सामने आ जाती हैं. जैसे अभी आपने ये बातें सुनी तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पा रहे हैं खुद की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों को, कुछ छोटी छोटी सी बातों कि हम बिना वजह ही कुछ बातों को इतना बड़ा बना देते हैं. होती छोटी सी बात है लेकिन सोच सोच कर हम उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि खुद के लिए बीमारी उत्पन्न कर लेते हैं. तो इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. उसके बाद मिलते हैं आप सभी के साथ कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर.

0: दोस्तों, इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास बातचीत, बहुत ही खास कार्यक्रम के साथ। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की। तो हमारी भावनाएं हमारी मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़ी हैं और वो किस तरह से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक किस तरह से है और किस तरह से हमारी जिंदगी में ये एंटर करते हैं। एंटर तो होते ही है, खैर, लेकिन रोल क्या रहता है, किस तरह से रहता है। तो मैम, जैसे अभी हमने बात की कि किस तरह से युवाओं के लिए ये मतलब प्रोसेस रहता है या किस तरह से वो खुद को इससे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन युवाओं या बच्चों या किसी की भी हम बात करें, चाहे बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे छोटे से बच्चे, क्योंकि आजकल तो फोन छोटे से बच्चे के हाथ में जब वो जन्म ले रहे हैं उसके कुछ टाइम के बाद जो है पेरेंट्स उनके हाथों में फोन थमा देते हैं ताकि वो शांति से बैठा रहे और वो अपना काम आराम से करते रहे। तो सोशल मीडिया का जो ये समय है हमारी जिंदगी में, एक तरह से इसका बहुत गहरा प्रभाव है, सुबह से लेकर शाम तक या रात की भी हम बात करें। तो क्या है कि आजकल चाहे मेरे घर की कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन मैं लोगों को दिखाने के लिए जैसे भी हो बेहतर करने की कोशिश करते, तो मुझे देखकर और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उनके मन में वो चीजें कि यार हम इतने बेहतर क्यों नहीं हो सकते हैं, हमारी लाइफ में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती हैं, हम भी एफर्ट्स करें, मेहनत भी करते, लेकिन फिर भी, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है ना वो उन्हें घुटन सी महसूस होती है, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते। तो ऐसा क्यों जो है ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, किस तरह से ये जो है हमारी हेल्थ पे प्रभावित होंगी या क्या किस तरह से रहेगा?
1: जी रुचिका, देखिए इसमें दो तीन बातें हम आपको बताएंगे। पहला, आज के टाइम पे तो चलिए सोशल मीडिया है, लेकिन अगर हम लोग आज से उस टाइम में चले गए जब हम लोग बच्चे थे,
0: बिल्कुल,
1: जब हम लोग के पास फोन नहीं थे, तो उस टाइम पर भी हमारे मन में ये ख्याल आता था कि अरे उसका बर्थडे पार्टी कितना अच्छा हुआ, उसने बर्थडे पार्टी में ये पहना था
0: जी।
1: उसके बर्थडे पार्टी में तो उसके पेरेंट्स ने ये गिफ्ट दिया, हमें क्यों नहीं दिया, हमको भी ये चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल।
1: यानी कि एक सेंस ऑफ कंपैरिजन हमेशा से रहा है और ये शायद इंसानों की फितरत में है, लेकिन ये इंसानों की फितरत में डाला जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे को स्टार्टिंग से ही बोलना शुरू कर, देखो उसने कैसे कह रहा है, देखो उसके वो तो अच्छे नंबर लाता है, उसको देखो वो कैसे गाना गा रहा है, तुम भी ऐसे गाना गाओ, उससे कुछ सीखो,
0: लोगों से वो कैसे बात करते हैं,
1: एग्जैक्टली, उनसे कुछ सीखो। तो जब बात आती है उनसे कुछ सीखो, तो बच्चे को मन में ये आता है कि अच्छा मतलब मुझे कुछ अडेप्ट करना है सामने वाले से, कुछ ऐसा जो मेरे पास नहीं है, और मैं सिर्फ वही क्यों अडेप्ट करूं जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, मैं वो भी तो अडेप्ट कर सकता हूं ना जो मैं चाहता हूं। और हर बच्चा, ऑब्वियस है कि हर बच्चे को टॉयज पसंद होंगे, हर बच्चे को कुछ ना कुछ फैंसी चीजें पसंद होंगी, है ना, चॉइस डिफर कर सकती है, पर कुछ ना कुछ तो चाहिए ही ना कुछ तो डिजायर इंसान लेकर पैदा ही होता है। तो बात प्रॉब्लम यहाँ पर डिजायर्स की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है या कर दी जाती है कि हमें लगता है कि सामने वाला ज्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर या इंसानों के अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। अब यही चीज मैनिफेस्ट हो रही है आज की जनरेशन में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, है सेम,
0: बिल्कुल,
1: बस द मीन्स थ्रू विच इट इज बीइंग मैनिफेस्टेड वो चेंज हो गया। अब दूसरी बात हम बताएं, अच्छा हमारे अंदर किसी भी चीज को पाने के लिए जो एक अपेक्षा होती है, जो एक आशा होती है, वो दो कारणों से उत्पन्न हो सकती है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से और दूसरी इंट्रिंसिक।
0: एक्सट्रिंसिक,
1: हाँ, एक्सट्रिंसिक यानी कि कोई ऐसी चीज जिससे हमें, जो बाहरी चीज जो हमें मिले, तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है जो बाहरी चीज है, एज इन इट कुड बी वेल्थ, इट कुड बी मनी, इट कुड बी सम मटेरियलिस्टिक थिंग, इट कुड बी समथिंग एल्स, बेसिकली मोनेटाइजेशन के एस्पेक्ट में, मटेरियलिज्म के एस्पेक्ट में हमें वो कुछ मिल रहा है
0: जी।

0: पाने के लिए हम एफर्ट्स दे रहे हैं, तो वो हो गया एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड व्यक्ति। दूसरा है इंट्रिंसिक, यानी कि हमें सुकून प्राप्त करना, हमें खुशी प्राप्त करनी, हमें एक ठहराव चाहिए जीवन में। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं इंट्रिंसिक मोटिवेटर के पहलू। अब जब हम सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति को कुछ करते हुए देखते हैं, किसी प्रकार का लाइफस्टाइल जीते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है हम ये पाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। अल्टीमेटली इंसान क्यों कर रहा है ये? कुछ भी अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? प्लेजर के लिए। तो वो सेंस ऑफ प्लेजर का जो मोटिवेशन है वो एक्सट्रिंसिक हो गया। लेकिन तीसरा पॉइंट, लोग ये भूल जाते हैं कि आपको कुछ पा लेने से खुशी नहीं मिलेगी, आपको कुछ होने से खुशी मिलेगी, आपको कुछ बनने से खुशी मिलेगी। तो इंसानों को लगता है कि मैं बाहर जो घड़ा है मैं उसको भर लूं, मैं उसको जितना भर लूंगा मैं उतना खुश हो जाऊंगा, लेकिन अंदर का घड़ा अभी भी खाली है। आप बाहर का घड़े को भरने के लिए उतने उतावले इसीलिए ही हो रहे हैं क्योंकि अंदर का घड़ा पूरा खाली है। अगर अंदर का घड़ा भरा हुआ है तो बाहर के घड़े भरने का आपको कोई शौक नहीं रहेगा। कहने का अर्थ ये है रुचिका कि इंसान मटीरियलिस्टिक चीजों की ओर या एक सेंस ऑफ पॉपुलैरिटी या फेम, इन चीजों की ओर तभी जाता है जब उसके भीतर कुछ कमी रह जाती है, जब उसको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। तो अगर आपको इस चीज से बाहर आना है तो सबसे पहले आई एम नॉट गुड इनफ, ये जो भावना है आपके अंदर, ये जो सोच है अपने प्रति, ये जो बिलीफ है अपने बारे में, इसको बदलिए। जिस दिन ये बदलेगा उस दिन आपको पता होगा कि हु यू रियली आर, आपको एक्चुअल में जीवन में क्या चाहिए और बाकी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं आपको उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपके अंदर से वो सेंस ऑफ कंपैरिजन ही समाप्त हो जाएगा।
1: बिल्कुल दोस्तों, कंपैरिजन जो है ना हमें जिंदगी में बहुत ही एक, और मैम जैसे कि आपने अभी कहा ना कि जो जैसे नॉट इनफ है ना, तो अगर हम बात करें, हम अपनी नॉर्मल जिंदगियों की बात करें, तो अक्सर इंसान की ये जो होती है ना इच्छाएं जो होती हैं वो कभी खत्म तो होती नहीं है। अगर हम किसी को देख के, अगर माना कि जैसे कोई है उनके किसी के फ्रेंड ने जो है वो बहुत बड़ी गाड़ी रखी है या बहुत बड़ा घर है, तो उसका दोस्त जो अभी बेचारा उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसे देखकर उसके मन में वो इच्छाएं जाग गई कि नहीं एक दिन मैं भी इतनी मेहनत करूं, या काश मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी हो, इतना बड़ा घर हो, इतने सारे मतलब चीजें जो है वो फैसिलिटीज जो है वो सारी मेरे पास हो। और माना कि उसने बहुत मेहनत भी की और वो उस मुकाम तक पहुंच भी गया और वो चीजें उसे मिल भी गई, लेकिन फिर भी वो जो एक सेटिस्फेक्शन है वो खत्म नहीं हुई। फिर उसका किसी और को देख के और मन जो है वो मतलब कि एक तरह से वो इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती जाएंगी।
0: इंसान लालच है ना? लालच भी एक भावना है देखिए। सो ऑल द पीपल हु आर स्ट्राइविंग टू बिकम मिलियनियर्स, बिलियनियर्स और व्हाटएवर, वो ये नहीं बोल सकते कि हम तो बस एम्बिशियस हैं, हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, वाई आर यू सो इनसेंसिटिव, वाई आर यू सो इमोशनल, दैट इज नॉट ट्रू। इवन दे आर इमोशनल, इवन दे हैव फीलिंग्स, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ग्रीड, एंड ग्रीड इज अ फीलिंग।
1: इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैम ने कहा कि जो हमारा अंदरूनी घड़ा है ना वो खाली है, बाहर वही आंखें जो वो तभी तो थकती नहीं है ना, देख देख के वो बात होती है ना कि बस देखते जाइए और वो इच्छाएं पालते जाइए अपने अंदर।
0: वही बिल्कुल, देखिए इच्छा रखना गलत नहीं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो इच्छाएं आपको अंधा कर दे
1: जी, ये ठीक, ये गलत है बिल्कुल। तो फिलहाल हमें भी आपकी जो इच्छा है वो उसे तो हम नहीं जाने देंगे क्योंकि वो तो छोटी सी इच्छा है और वो है एक प्यारे से गीत की। तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक को और उसके बाद फिर से वापस आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: 91.5 दो मेगा हर्ट्स पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिता और
1: प्रियशी के साथ
0: जी। तो आइए दोस्तों बहुत ही खास बातचीत मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल स्वास्थ्य यानी कि भावनात्मक स्वास्थ्य हमारे लिए किस तरह से हमारी जिंदगी में रोल अदा करता है या किस तरह से जरूरी रहता है। तो बहुत सारी खास खास से बातें जो है हमने आप सभी के साथ साझा की, खास करके मैंने आप सभी के साथ साझा की है कि कौन कौन सी बातें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने इमोशंस को जो है वो एक तरह से रेगुलेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि दबाने चाहिए क्योंकि दबाना भी कहीं ना कहीं बीमारियों का संकेत है तो बीमारियां कोई नहीं चाहता। तो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मैम अक्सर हम डेली की बात करें, जिंदगी की बात करें, डेली रूटीन की हम बात करें तो कोई भी बीमारी हो चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, कोई भी हो, तो जो कहते हैं दो वक्त की रोटी उसी के लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात को नींद तक चैन की नहीं सो पाते तो अक्सर जब हम खाने की बात करते हैं या नींद की बात करते हैं तो उसे फिजिकल हेल्थ से ही रिलेट किया जाता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल और मेंटल हेल्थ की। तो क्या ये हमारा जो खान पान है, जो अच्छी नींद है, वो इससे रिलेट करते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ है? तो इसे किस तरह से ये हम रिलेट अगर करना चाहें, क्या इसके लिए जरूरी है मतलब अच्छी नींद और सही खान पान?
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रुचिका
0: जी।
1: देखिए पहले हम बात करेंगे नींद की।
0: बिल्कुल,
1: नींद इंसान, अगर नींद नहीं आती है तो वो इंसान को बहुत सारे लेवल पर परेशान कर जाती है। ऐसे मानिए कि ब्रेन और माइंड वो साइकिल के दो पहिए हैं, ये साथ साथ चलते हैं, ये अलग अलग नहीं है। ब्रेन के कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग, हमारे एनालिटिकल थिंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो उसको ऑपरेट करता है, यहाँ तक कि इमोशनल जो हमारा ईक्यू होता है ना, उसको भी। अब जब इंसान सही से सोता नहीं है, नहीं सो पाता है तो क्या होता है, स्लीप का क्या काम है? बेसिकली स्लीप का काम है कि वो हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स को कम्प्लीटली रिलैक्स कर दे और जो हमारी सेल्स है उन्हें रिज्यूवनेट कर दे और हमारी सेल्स बार बार बनती हैं, नई डेवलप होती है। अगर नींद नहीं आएगी, और ये सब नींद के दौरान हो रहा है, नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, हमारी सेल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, हमारे जो सेल्स को रिजुविनेशन चाहिए था उन्हें वो नहीं मिल पाएगा और जो हमारी मसल्स को रिलैक्स मिलना चाहिए था, रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए थी उनको, वो भी नहीं मिल पाएगी। यानी कि पूरी बॉडी ओवरऑल एंड ब्रेन इन इटसेल्फ, ये सब कुछ एक स्ट्रेस के अंदर अपने आप को महसूस करेगा जिसकी वजह से ब्रेन सही से काम नहीं करेगा। जब ब्रेन सही से काम नहीं करेगा यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर जब इम्पैक्ट पड़ेगा उससे क्या होगा, उससे इंसान सही से सोच नहीं पाएगा, उसका दिमाग ठीक से काम ही नहीं करेगा, वो डिसीजंस नहीं ले पाएगा, लेफ्ट को राइट बोलेगा, राइट को लेफ्ट बोलेगा, सामान कहीं रखेगा और भूल जाएगा लेकिन मेमोरी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि वो भूल ही गया। कई बार ऐसा होगा कि चश्मा सर पे लगा रखा, पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहे होंगे। मूड में एक प्रकार का चिड़चिड़ापन आ जाएगा क्योंकि बॉडी आपको ये बताना चाह रही है, जो हार्मोनल डिस्टरबेंस उसने क्रिएट किया है बॉडी ने, वो इसलिए कर रही है कि वो इंसान को बता सके कि आपको रेस्ट की जरूरत है। तो अगर आप सही से रेस्टेड नहीं है, इफ यू हैव नॉट स्लेप्ट वेल, तब आपको ये सब तरह के इश्यूज महसूस होंगे। जब बॉडी ही स्ट्रेस में है तो वो आपको साइंस एंड सिग्नल्स भी देगी ही ना कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है, इसलिए बार बार नींद भी आएगी, मूड चिड़चिड़ा रहेगा, यानी कि लोगों से बातचीत ना करो, बॉडी बार बार बोलेगी आप कोई काम मत करिए, आप जाकर बस सो जाइए, क्योंकि ना काम ढंग से करने देगा वो, ना लोगों से बातचीत सही से करने देगा, कोई मीटिंग होगी तो वहां बात बनने की जगह बात बिगड़ जाएगी तो स्लीप का डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ। इसके साथ साथ क्या होता है कि स्लीप नहीं होने की, पूरी नहीं होने की वजह से इंसान के अंदर हार्मोन्स का जो एक इम्बेलेंस स्टार्ट होता है उसमें कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। अब बॉडी को लगेगा कि कुछ तो इश्यू है, अब मैं सर्वाइवल मोड पर हूँ तो इसीलिए मुझे अपने वॉरियर्स भेजने पड़ेंगे, तो वो अपने कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा देती है और फिर उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो या स्किन प्रॉब्लम हो या आंखों के नीचे काले गड्ढे हो, वो सब शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि आपका डाइजेशन भी इम्पैक्ट हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये सारा काम सोते टाइम ही हो रहा होता है, तो अगर आप सोएंगे नहीं तो ये सब इम्पैक्ट होगा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ खराब। नाउ गोइंग टू रुचिका, आपका सेकंड पॉइंट जो था
0: जी
1: हमारा खान पान।
0: खान पान
1: देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी वाटर कंटेंट है, उसका अपना पीएच वैल्यू होती है। आज के समय पे हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें एसिडिक कंटेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो पीएच मात्रा है वो एसिडिक हो चुकी है, जिसकी वजह से अब लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की दिक्कत बहुत ज्यादा है। अल्टीमेटली आपको बॉडी आपकी बॉडी आपको साइंस दे रही है कि दैट समथिंग इज नॉट ओके। कमिंग टू दिस कि हमारा जो गट है, हमारे गट में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्ट सिग्नल भेजते हैं टू द ब्रेन, और अगर गट में कोई इश्यू है तो ब्रेन को तुरंत पता चलेगा कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो आपका मूड खराब करेगी। क्योंकि बॉडी आपको कैसे सिग्नल देगी? बिहेवियर के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, थॉट के थ्रू, ये सारी माइंड के वेज है टू कम्युनिकेट विद यू। तो बॉडी और ब्रेन इकट्ठा काम कर रहे हैं टू गिव यू सिग्नल्स एंड टू टेक योर अटेंशन ऑन दैट देयर इज समथिंग नॉट ओके विद योर बॉडी, कि प्रोबेबली आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इश्यूज ना हो। क्योंकि एक बार आपका डाइजेशन खराब हुआ, आपको अच्छा ही महसूस नहीं होगा, आपके सेरोटोनिन लेवल्स ही डाउन हो जाएंगे। समझ रहे हैं? सेरोटोनिन डाउन होने का मतलब है आपका मूड लो।
0: मूड लो और मूड लो हो गया तो फिर सारे
1: मूड लो हो गया, इरिटेबिलिटी आ गई आपका, आप बाहर जाना आपका कम हो गया, आप डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए, और ऊपर से एंजाइटी भी बहुत होती है ऐसे टाइम पे, तो इसीलिए आपको अपना खान पान का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी ने जाना कि सिर्फ नींद और खान पान की हम बात करें तो अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाए तो हमारी पूरी रूटीन बिगड़ सकती है।
1: कई ऐसे खाने होते हैं रुचिका जो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हमें खुश रहना है तो हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, जिससे हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो ऑब्वियसली हमारी इमोशनल हेल्थ बेटर होगी। तो लोगों को थोड़ा सा इस पर सोच समझ के अपना खान पान बनाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो मन किया वो खा लिया। खा सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें उस पर विचार करना भी जरूरी है। तो बहुत ही ये खास बातचीत जो है दोस्तों, आप सभी ने जानी सुनी समझी, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसी चीजें होती हैं या कभी भी आपको ऐसे सिम्टम्स लगे तो आप जरूर इस पे गौर कर सकते हैं और इस पे ध्यान जरूर देना चाहिए, नहीं तो फिर एक भी हेल्थ अगर थोड़ी सी आगे पीछे हो गई तो सारी हेल्थ जो है हमारी बॉडी की पूरी गड़बड़ा जाएगी, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली, क्योंकि सारे आपस में जो है ये रिलेट है, और एक का भी हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहां हम खुद का ही ध्यान नहीं रख पाएंगे तो फिर जो परिवार का हम ध्यान रखते हैं वो कैसे रख सकते हैं। तो बिल्कुल, अब इसी बातचीत के साथ जो है दोस्तों, अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का भी। लेकिन हाँ, एक खास बात, अगर आपको लगता है कि आप और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन है, हमारी बातचीत जो है जो आप सभी तक पहुंच रही है, क्योंकि आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, क्या इस समय जो है कन्फ्यूजन है किस बात को लेकर, वो आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो उसके लिए आप सभी प्रियशी मैम के साथ जो है वो बात कर सकते हैं, हमारे नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं, और वैसे भी नहीं तो आप सेंटर भी आ सकते हैं डायरेक्टली। तो हमारे सेंटर का पता है
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला गांव, धर्मशाला,
0: और कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख लीजिए
1: 9354134057।
0: जी दोस्तों, तो ये हमारे सेंटर का पता और नंबर भी आप सभी तक पहुंचा दिया गया है। तो जरूर अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि दोस्तों मेंटल हेल्थ की हम बात करें ना, अगर छोटी सी भी लापरवाही हम दिखाते हैं तो हमारे लिए ना लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती है, और एक बार प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो फिर सालों लग जाते हैं उसे ठीक करने के लिए, और कई बार सालों लगाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि शुरुआती दौर में हम ध्यान नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बेहद जरूरी है, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी शर्म, और बिना उन सोसाइटी के चार लोगों की बातों के सोचे बिना जो है अपने बारे में सोचिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए, और उसके लिए एक बेहतर सा कदम उठाइए। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी
0: कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई कड़ी के साथ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई ऐसी बातचीत हो जिसपे बात करनी चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर आपने नोट किया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि विषय पे बातचीत होनी चाहिए ताकि लोग उसके बारे में जान सके। तो जरूर आप हमें मैसेज कीजिए ताकि हम उस पर बातचीत कर सके, अपने जो विचार है, खास करके प्रियशी मैम की जो राय होगी, जो भी उस पर समाधान होगा वो आप सभी तक पहुंच सके। तो फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत तथा यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति की 4थी बैठक ब्यूनस आयर्स में हुई। बैठक में वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान तय कार्य योजना की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा हुई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय भंडारण निगम ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CEWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजक्शकियान ने कहा है कि तेहरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमरीका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजक्शकियान की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादू, रिमझिम बरसता भादू का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशी दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी इंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से इंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने कंठ की।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे।
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ। तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही, पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे 2 शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने 2 शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है,

0: कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला के नमेश शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक दशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी नमस्ते कन्नै तुस सारे कार्यक्रम दे सफर कन्नै जुड़ी होने कन्नै दोपहर दा इस समय है, तुस सारे भी इंतजार जेह्ड़ा इसे करदे न कि कालू दिया दो बजदे न, कन्नै अहां भी इंतजार ही करदे न कि कालू दिया दो बजदे न, कन्नै कालू दिया अहां अपने श्रोता कन्नै रूबरू होंदे न, क्योंकि श्रोता जेह्ड़ा न से अहां जो कॉल भी करदे न, टेक्स्ट मैसेज भी करदे न, व्हाट्सएप मैसेज भी करदे न, कन्नै जेह्ड़ा पैह्ले श्रोता न से अहां कन्नै जुड़ चुके न, करदे न तिन्हां कन्नै गल्ल बात। हैलो
1: हैलो
0: हैलो
1: हैलो
0: जी नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: धन्यवाद जी, नमस्ते
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे जी? हैलो,
1: ठीक ठाक न
0: जी? जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी, तुहां ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी हाँ जी, हाँ दाड़ी ते बोला रहे
0: जी? दाड़ी ते बोला दे मेघनाथ जी ना?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता मेघनाथ जी, कल रक्षाबंधन दा जेड़ा पर्व था सेक दिया की रे
1: तो मुबारका ये ना रक्षाबंधन सा होई हुन जन्माष्टमी होनी
0: जी जी, जन्माष्टमी भी होनी पर जेड़ा पर्व रिया सेक दिया की रिया तो हुंदा रक्षाबंधन दा। मेघनाथ जी, दाड़ी दा मौसम कदे है जी? जी अच्छा, धूप लगी हो जी? जी
1: हां जी
0: जी। ता ओ नोई दा जी
1: सारा ठीक ही है, चले प्रोग्राम
0: जी। ता मेघना जी, आज तो हां कुंदिया गीत चिड़े से सुनना पसंद करके
1: आज थोड़ा मुझे भजन सुनाई दिया। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, जपनी गोरा खिलासा
0: जी। जी कने आज हां जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करनी है सभी तो तक जरूर पहुंचाई दे ना जी।
1: आज हमारा मत भूल देना मेरीया
0: जी, नहीं भूलते जी जी। गल बात हां आज जेड़ा खास दिन बना देन से बना देन राष्ट्रीय खेल दिवस ना जी?
1: जी
0: जी, राष्ट्रीय खेल दिवस बना देना जी।
1: अच्छा
0: अच्छा जी। ता अगर हां पुरानी खेला जो याद करिए ता कुछ ना कुछ से हां जो पुराना जेड़ा हां दा दौर है उस च पहुंचाईंदी है ना जी?
1: वही पुरानी खेल लगता रही है
0: जी उन दा नहीं है ना, पर तो हां तालु सबसे ज्यादा
1: फुटबॉल रहा कने की ज्यादा ज्यादा करी लोग क्रिकेट से ले आवे भी
0: जी जी।
1: बाकी सारिया जिन्या फुटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है
0: जी,
1: ये जेडी चीजा है तो सारिया समझ ले गुमी हुई है
0: जी जी जी। कुछ ना कुछ गुम हुई है, पर तो हाँ क्या बच्चियां जो संदेश देना चाहते कि जेड़ा पुरानिया गेमा न या खेला न से हम वास्ते कितनी ज्यादा जरूरी है न? हेलो हेलो, जो तो कॉल जड़े से डिसकनेक्टेड हुई हो तो जरूर हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने अजकनी जेड़ा हाँ दी गलबात रहनी है से मैं जरूर तुहां तक पहुँचाई थी हुआ कने तुहां सारियां भी सुनी ली होनी है। तो तुहां भी जरूर अपनी जेड़ा खेल है जेड़ा सबसे ज़्यादा तुहां जो पसंद है या से खेल तो हाँ खेलियो, कई बार हाँ कोई भी खेल खेल देना तो हाँ जो याद आई आंदा है अपनी पुरानिया यादा जेड़ा न से जरूर तो हाँ ताज़ा जेड़े से इस कार्यक्रम च करी सकते। तो जरूर अहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है क्योंकि सफर अगे बढ़ गया ताई ता जेड़ा गीत संगीत ਸਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸਕਦੇ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਆਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਕਨੇ ਯਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਸਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਨੇ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਨੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਹਾਂ ਬੋਲੀ ਸਕਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਇਸ ਗੀਤ ਕਨੇ।

0: दर्शकवृंद सारे सुनिया ये गीत शुरुआत तो जरूर शुरुआत जड़े से हाँ इस गीत कने की थी है कने तो हाँ सारी भी माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी होने जल्दी जल्दी जुड़िया अगर नहीं जुड़े होने समय की गल करिए 2:12 समय जड़े से हुई है कार्यक्रम च 12 मिनट जड़ा न से तो हम इन्ना बोली सकते कि छुट्टी है न तो जल्दी जल्दी समय जड़े से बर्बाद मत करा कने अगले जड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी तो अपने रेडियो सेट दी आवाज कम करी लें जी।
1: ठीक है एक मिनट
0: जी। स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: हाँ जी मैडम
0: जी तो कुत्थों ते बोला दे कने तुहंदा नाम की है जी।
1: मैं धर्मशाला से बोला पछाड़ा लागे
0: जी धर्मशाला ते बोला दे विजय जी।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी पहचान जाते तो हाँ
0: जी तो विजय जी आज हाँ जेड़ा कार्यक्रम च खास दिन बना दे न से तो हाँ जरूर सुनी ले आना है कि क्या खास दिन बना दे
1: ना। नहीं मैडम जी मैं बस हूं ही लगा है ये ले कर
0: जी। अच्छा ली हूं ही ऑन किता रेडियो तो हां।
1: हां जी हां जी
0: राष्ट्रीय खेल दिवस जेड़ा से आज हां बना दे न तो हंदी जेड़ा सबसे मतलब पसंदीदा खेल कौन दे है जेड़ा तो हां स्कूल टाइम या अपने बचपन च खेल दे थे
1: ताली खेल दो बच्चा रवि जी बच्चा नहीं क्रिकेट की
0: जी जी कुंडे ही थी
1: क्रिकेट क्रिकेट
0: जी। अच्छा क्रिकेट
1: हां जी हां जी
0: जी कने जेड़ा पुरानिया खेलन दी यहां गाल करिए तो तीना च कुंडे ही थी
1: पुरानी जो सही थी रवि जी
0: जी। अच्छा सही थी ज्यादातर
1: हां जी हां जी
0: जी। चलो हर किसी दी अपनी अपनी पसंद होंदी ना जी।
1: हां जी बोल जी हां जी
0: जी। तो विजय जी आज तू हो कुंदिया गीत जड़े से सुनना पसंद करगी।
1: आज सुनाई तो हो रुण चुन गया सुनाई जा
0: जी। अच्छा रुण चुनवा सुनना है तो हां।
1: हां जी हां जी
0: जरूर जी। ए फरमाइश तो तक पहुंचा दें जी जुने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हुंदा
1: जी।
0: तो शो तो गल बात पर फिर ते आहा वापिस आई आंदे न आज कने दिने दी जेड़ा गल बात है से तो तक पहुंचा दे न 29 अगस्त 2026 दी आज हाँ जेड़ा खास दिन बना दे या भारत दी गल करिए या दुनिया दे इतिहास दी गल करिए 29 अगस्त जो जेड़ा बेहतर खास दिन या इतिहासिक जेड़ा बोली सकते कि हर किताब दा पन्ना जेड़ा ऐसे यहाँ जो कोई ना कोई सीख या कोई ना कोई जेड़ा चैप्टर ऐसे यहाँ पढ़ देना तो हाँ जो तीते कोई ना कोई जेड़ा सीख है से ज़रूर मिलती है। तो आज कने ही दिन है जड़े से जड़ा हाँ दे हॉकी दे जादूगर मनेज जड़ा मेजर ध्यान चंद जी हैं तिना दा जन्मदिन जड़े से आज होया था तो तिदे उपलक्ष पर जड़े से राष्ट्रीय खेल दिवस जड़े से 29 अगस्त जो बढ़ाना जड़े से शुरू किया था। तो दिखा हर दिने दी अपनी अपनी खासियत है तिना जो समान देने वास्ते ये दिन जड़ा है से तिना जो समर्पित है। तो शो तुम खेल दी अहाँ गल करिए तो खेल जड़ा से अहाँ वास्ते सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कने तो हाँ त्यागा ते जड़ा से अपना रेडियो सुना दे उन्हें न तो रेडियो सुनने दे बड़े सारे फायदे न क्योंकि जलो अहाँ एक बारी रेडियो ऑन करी दे न तो मनोरंजन का जड़ा पिटारा है सभी तुह तक पहुँचता है जानकारियाँ भी तुह तक पहुँच दया कने अपना जड़ा मन है सभी लगे रहता। तो शो तो मन तुह जरूर लगा कने इस कार्यक्रम के सफर च भी जुड़िया कने अहाँ भी थोड़ा दिया इस सफर जो बेहतर बनाते न या खास बनाते न गीत संगीत कने गीत संगीत अहाँ बोली सकते पर या फरमाइशा कने क्योंकि जड़ा श्रोता न से फरमाइशा करते न कने हाँ जरूर तिना दी जड़ा फरमाइश है से तिना तक पहुँचा दे न अगली फरमाइश तुह तक पहुँचा दी है इंतज़ार जड़ा है से तुहंदा बिल्कुल ख़त्म है।

0: भूला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो तो शशि कने दर्शो तो इसी कने तो हाँ सारे गीत ए फरमाइश भी इंजॉय की थी। ए फरमाइश अहां जो आयु वे दाड़ी ते कने तिना दा ना वे मेघनाथ जी ता जरूर मेघनाथ जी तक अहां ए फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारियां भी इंजॉय की थी। तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जड़ा हां दा नंबर है से तुह तक अहां बार बार पहुँचा देन कि जड़ा श्रोता नोए जुड़े न या जड़ा श्रोता छुट्टी हो तिना तक अहां ये नंबर बार बार जड़े से पहुँचा देन। तो तुहां दा काम है नंबर नोट करना, नंबर नोट करा फिर अपना जड़ा फोन है से चुकी लिया कने फोन करना चिड़े से शुरू करी दिया। नंबर है 701-811-7091 नंबर तो तक पहुँचाई थे कने बाकी जेड़ा काम में से तो होंदे है। तो शो तो आज कने दिने दी गल करिए या मौसम दी गल करिए तो मौसम जेड़े से बड़ा सुहाना है। कई बार होंदा ना कि छुट्टी वाला दिन है तो मन करता कि अपने जिहड़ा घरे दे काम मन तिना जो करी लीए। तो जरूर अगले जिहड़ा श्रोता ने तिना कन्ने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी सब ठीक ठाक, तुहां ठीक है न?
0: जी हां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहा कुथु दे रहने वाले ने कने तुहांदा
1: नाम क्या है जी? यो ते बोला दा यो ते बोला मैं परसों टिकट च बैठ के।
0: जी जी
1: मैडम जी एक गाना है जम्मू दे मुड़े दा जिंदगी सोहनी लगदी है
0: जी। कुंडिया गीत
1: जिंदगी सोहनी लगदी है
0: जी। जी जिंदगी सोहनी है जी। हां जी
1: हां जी हां जी
0: से गीत सुनना जी तुहा।
1: जी
0: ता आज यहाँ जिड़ा गल बात करा देन से करा देन तिदे ऊपर भी थोड़ी देर गल बात कर लें देन जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी ता आज यहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस दे बारे च जिड़ा ऐसे आज गल बात करा देन ना जी।
1: अच्छा जी
0: जी
1: तो
0: जी तो हुंदी सबसे फेवरेट खेल कौन दे ही है जी?
1: मैडम जी साढ़े टाइम में आजकल खेल नहीं रही आजकल मुड़े बच्चे खेला फोन में नहीं है ना।
0: जी जी जरूर तुहां दे खेला दा जिक्र करा क्योंकि जितने भी श्रोता सुना देन या बच्चे सुना दे
1: उनके मैडम जी साढ़े टाइम ना गुल्ली डंडा भी होता था
0: जी।
1: कंचिया खेल दे थे फुटबॉल खेलना हर चीज खेलनी
0: जी जी।
1: आजकल तो बच्चे पता ही नहीं है था
0: जी पता ही नहीं है तिना जो ता सिर्फ मोबाइल फोन चाहिदा ना जी।
1: बस इन्हें फोन ही चाहिदा बच्चे आजकल जहां तेरे गलाइए ना साढ़े टाइम खेल बोड़िया तुम्हें क्या पता क्या खेल होंगे
0: जी। पर उस टाइम से खेला कुथी ना कुथी जो हां दे चेहरे पर स्माइल लेकर होनिया थी है ना जी।
1: हां जी हां तो अपने बच्चे भी जानते ना दुखा खेल आए होनी है पुरानी पुरानियां
0: जी जी
1: तेरे पता ही नहीं था
0: जी। कने अपना पन झलकदा जी तिना
1: गेम। हां जी हां जी
0: कने
1: बात तो फोन चाहिदा
0: जी जी। यहां अगर लुक लगाड़े दी गल करिए ता हां जो ना जीजू कंडवे दा डर है ना कैसी दा डर है ना जी उस टाइम ता
1: बिल्कुल जी खेल खेला होनी है पहला ना बंदे तंदुरुस्ती भी रहते थे
0: जी जी क्योंकि उस
1: बिल्कुल तंदुरुस्त रहते थे आजकल का नहीं है ना आजकल का
0: चलने दी शक्ति है जी जी जरूर बड़ी अच्छी गल है जी। इन्हें बच्चे जो जेड़ा शिक्षा है या ज्ञान है से देना चाहिए
1: क्योंकि
0: हर पेरेंट्स दा काम होता ना जी अच्छे बुरे दा ज्ञान।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी जी
1: हां जी
0: जी ता
1: ज्ञान बन के ज्ञान मिलगा
0: जी जी क्योंकि ज्ञान देने ने और ज्यादा ज्ञान जेड़ा से
1: ज्ञान मिलदा। हां जी
0: जी जी ता जरूर तोहंदी जेड़ा फरमाइश है से तोह तक पहुंचा दी जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा
1: ठीक है मैडम जी नमस्ते।
0: जी
1: नमस्ते मैडम जी
0: जी श्रोताओं तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते कने अगले जिहड़ा श्रोता न सभी जरूर अहां जो कॉल पर कॉल करा देन तिना दी कॉल भी अहां जरूर लेनी है कने जुड़ी हो न कर देन तिना कने गल बात। हेलो
2: हेलो नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ
0: ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਬੋਲਾ ਤੇ ਕਨੇ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ
2: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ
0: ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰੇ ਤੇ ਬੋਲਾ ਦੇ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੌਸਮ ਕਿਹਾ ਵੇ ਉਸ ਸਾਈਡ
3: ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੌਸਮ ਠੀਕ
0: ਹੈਲੋ
3: ਹੈਲੋ
0: ਹੈਲੋ
3: ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
0: ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਦੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਕਦੇ ਹੈ ਜੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ
2: ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਕੀ ਵਜੇ ਲਗੀ ਪੋਰੀ ਵਰਖਾ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਦੀ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3:30 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਲਗੀ
0: ਪੋਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਅੱਜ ਆਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦੇਣ ਸੇ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਤੁਹਾਂ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਖੇਲ ਕੁੰਨ ਦੀ ਥੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਥੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਗੇਮਾਂ ਨਾ ਸੇ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਥੇ ਤੁਹਾਂ
2: ਲੋਕਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੋਈ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ
0: ਜੀ
2: ਕਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖੇਲਦੇ ਥੇ
0: ਜੀ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਬਚਪਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਕੁਛ ਅਨੋਖੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਚਪਨੇ
2: ਹੋਰ
0: ਜੀ ਜੀ
2: ਛੁਪਨ ਸਪਾਈ ਚੋਰ ਸਪਾਈ
0: ਜੀ
2: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ
0: ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਨਾ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦੇਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੂ ਦਾਦੀਆਂ ਕੰਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁੰਨ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ
2: ਅੱਜ ਗੀਤ
0: ਜੀ
2: ਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਕੋਈ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਸ਼ੋ ਤੋਂ ਆਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਨੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ

तो शो तो सारे ही सुना दे इस प्यारे दे गीत जो प्यारी दे फरमाइश जो जिंदगी सोनी है तो जरूर इस गाने दे जेड़ा बोल हैं बड़े प्यारे न अगर हाँ

0: तशु तो गल बात करा दे थी कि जिंदगी जड़े से सोहनी है तो जरूर जिंदगी बड़ी सोहनी है कने इस गाने दे जड़ा बोल हैं तस्वीर खिंचया करो क्योंकि तस्वीर खिंचना भी जरूरी है यादा बनी करी जड़ा न सहरे आदियां न कने तो हाँ जड़े से रक्षाबंधन का जड़ा पर्व है सभी जरूर बड़ी धूमधाम ने बनाया होना है कने हूँ जड़ा जन्माष्टमी का जड़ा पर्व होता है तो हाँ सारे जो ही रेडियो गुंजन परिवार की तरफ से इस दियाँ भी बड़िया सारिया शुभकामनाएं हो जन्माष्टमी दियाँ कने इसी कने अगले जड़ा श्रोता न तिना कने कर देना गल बात। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी मैम, बढ़िया जी।
0: जी तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहां दा नां की है जी?
1: मैम मैं जानने ते बोल रहा टीटू
0: जी। टीटू?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। कुत्थों ते रहने वाले हैं जी?
1: बैजनाथ।
0: बैजनाथ ते
1: मुझारना टीटू
0: जी। जी हाँ जी। टीटू जी, बैजनाथ दा मौसम किदे है जी?
1: मौसम तो लग गई तो थोड़े बदल हो जाता है, बरखा का माने माहौल
0: जी। अच्छा, बरखा का जेड़ा माहौल ऐसे बनी है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो टीटू जी, आज हाँ जेड़ा गलबात करा दे हैं दीदी पर गलबात जरूर करनी है जी। तो हाँ ते भी जेड़ा तो हंदी जेड़ा सबसे फेवरेट खेल है तीस दे बारे चाहा पूछना है ता तो हंदी सबसे ज्यादा फेवरेट खेल कौन दे है जी?
1: मेरी है जी वॉलीबॉल।
0: वॉलीबॉल।

0: गाँव का माहौल है या गेम से एक ही दूसरे ने जोड़ी के रखती थी है ना जी
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी कने मोबाइल तो जो एक ही जगह ही सीमित करींदा ना जी
1: मोबाइल जी एने की जगह सीमित करी ना मैडम,
0: जी
1: कने दुग है कि भाई वर्जिश नहीं होंगी बच्चे की,
0: जी
1: एक्टिविटी घट जाती।
0: जी जी
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी तो
1: पहले
0: तुम्हें
1: बच्चे की एक्टिविटी वगैरह फुल होंगी जी।
0: जी जी तो तुम्हें क्या लगता कि पुरानी गेम अच्छी है ना कि हूँ जेड़ा हर हाँ जो सुविधा सुख सुविधा हम बोली सकते कि हाँ जो मिला दी ना जी
1: पुरानी अच्छी है ना,
0: जी पुरानी जेड़ा ना अच्छी है ना कने उन्हें दी यहाँ गल करिए तो हर बच्चे दी जी दे ये कि मोबाइल फोन च चाहे यहाँ बाकी है क्या गल करिए हाँ अपने घरे भी
1: हाँ
0: अगर गल कर देना या कोई भी है ना जी हाँ अपने घरे ची
1: जी,
0: दिख देन तो बच्चा जेड़ा से हर टाइम मोबाइल फोन करने लगे अगर हाँ तीस जो बोला देन तो से अपनी जिद करा दा ना जी
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम,
0: जी तो तीस दी जिद अगे यहाँ भी हारी आंदे कि यहाँ क्या करना पर हाँ तीस जो जेड़ा कहानियां न से जरूर सुनाई सकते या मतलब अच्छी अच्छी चीज जी
1: हाँ जी मैम। ये ना स्कूल स्काल ची होना चाहिए, ये ना शुरू
0: जी जी
1: जैसे
0: जी
1: स्कूल ची होना शुरू था, स्कूल टे बच्चा फिर सीख लेंगा,
0: सीखी लेंदा
1: ज्यादा
0: जी
1: सीख लेना जितना स्कूल से सीखता।
0: जी जी
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी तो टीटू जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनने जी
1: हाँ सुनना, कच्चा
0: जी कुंदिया
1: दूध पी ले रात के, गम
0: जी कच्चा गीत
1: उतरे पहाड़ पे आनी।
0: जी जी जरूर जी तोहंदी जेड़ा फरमाइश है से तोह तक पहुँचान दें जी
1: मैं
0: तोने
1: वहां तक ना पकड़ ला, मैं लास्ट जी पी टू।
0: जी जरूर जी
1: हाँ
0: जी
1: जी,
0: जी
1: पी टू में जानना।
0: जी धन्यवाद जी
1: हाँ जी, हाँ
0: जी
1: जी, ठीक है मैम, धन्यवाद
0: जी
1: जी।
0: जी दर्शो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते ना कहने तो हो जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते ना अगली फरमाइश की ओर अगर हाँ नज़र दौड़ाइए तो ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा ना वे ना भी जरूर अहाँ तुह तक पहुँचाना है पर गीत जड़े से पहले तुह तक पहुँचाएंगे ना फिर ही बाकी जड़ा जानकारी है से तुह तक दिन देना।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला देख ने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने गलबात आह करा देना। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे च 29 अगस्त जो आज हाँ ये खास दिन बना देना तश तो राष्ट्रीय खेल दिवस का क्या मकसद है या खेल जिहड़ा हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद है कने खेलां दा महत्व जिहड़ा है असां दे जीवन च बड़ा ज़्यादा है पर अज कने दौर दी अहां गल करिए तां कुथी ना कुथी ए खेल जिहड़ा अहां खेलदे न से कुथी ना कुथी जिहड़ा अहां दियां पुरानियां खेलां न से बिल्कुल खत्म हन या दिखणे जो नहीं मिला दियां या मोबाइल फोन ने से खेल भी अहां ते छीनी लियां या ये बोली सकदे कि बच्चे जिहड़ा न से ज़्यादातर मोबाइल फोन च खेलना पसंद करते पर कुथी ना कुथी मोबाइल फोन जिहड़ा से अहां जो ठीक है मोबाइल फोन च तुहां गेम्स खेला दे न तां इहदे बड़े सारे नुकसान हन कने अगर तुहां कोई भी खेल खेला दे न या अपने यार दोस्तां कन्ने खेला दे न या अपने गांव च खेला दे न क्योंकि इस खेलने दा अलग ही मज़ा होंदा या अंदाज अहां बोली सकदे कने कुछ गल्लां जिहड़ां न से अहां जो सिखने जो भी मिलदियां तां जरूर अपना जिहड़ा इंजॉय है से भी करना जरूर है। अहां अपना बचपन कुथी ना कुथी मोबाइल फोन तक ही जिहड़ा से सीमित रखा दे कने मोबाइल फोन जिहड़ा से हर तरफ अहां जो नुकसान भी दिंदा है फायदे भी है नुकसान भी है पर सही है ना कि अहाँ पर ही निर्भर करता है कि अहाँ किस तरीके ने हर चीज़ का जिहड़ा सदुपयोग है से करते न कने अज अहाँ जिहड़ा खास दिवस बना देन राष्ट्रीय खेल दिवस दियाँ तुहां सारे जो एक बार फिर ते हार्दिक शुभकामनाएं हो अज 29 अगस्त जो एक खास दिन जिहड़ा से जितने भी देश के दे खिलाड़ी हैं या जिहड़ा वीर हैं तिना जो समर्पित है जिहड़ा दुनिया दी जिहड़ा रक्षा या तिरंगे पर अपनी जिहड़ा रक्षा है से तिरंगे दा जिहड़ा मान है से बढ़ा देन तो जरूर भारतीय खेल दिवस जिहड़ा है से अहां जो एक सुनहरा जिहड़ा मौका है से दिंदा है कने हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद होंदी खेल खेलने दी या गीत सुनने दी या हर कुसी दा अपना अपना शौक है तो इस शौक जो भी पूरा करा कने चलो हाँ कोई भी खेल खेलते न तो अहां दा जिहड़ा शरीर है स्वास्थ्य है से थोड़ा जिहा फिट एंड फाइन रहिंदा है कने हर कोई चाहता है कि अहां फिट एंड फाइन रहन गाँव की गेम जिहड़ा गल करिए जिहड़ा छुपन छुपाई है या बाकी जिहड़ा खेल हैं तिना की गल करिए तो सभी थोड़ा जिहा अहां दे शरीर जो फिट रखदियां न हुण तुहां सोचा दे होणे कि किन्ना रखदियां फिट ते इस तुहां एक ही जगह तो नहीं बैठते थोड़ा जिहा भागना भी पौंदा है पकड़ने छुपन छुपाई की गल करिए छुपन छुपाई च तुहां थोड़ा जिहा भागते भी हैं छुपते भी हैं तो इस गेम खेलने का कितना मजा है तुहां सारे जो भी जरूर यादा जिहड़ा न याद आई आनियां तो इसी कन्ने अहां अपने कार्यक्रम के सफर जो भी अगे बढ़ाते न कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते न तुहां सारे भी इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे सुनिया एक ही ते भजन। इस भजन की फरमाई शहादत पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने। तिना का ना वे राधा कश्यप जी कने से रहने वाले न कांगड़े ते। तो जरूर इसी भजन कने हाँ फिर इतने थोड़ा देर अगे बढ़ते न कने तो हाँ जो धर्मशाला दी जिड़ा शहर है से करवाते न, क्योंकि अगली जिड़ा फरमाइश है सहां तक पहुंची हुए धर्मशाला ते। कने तिना का ना वे विजय जी।

तशतों तो हसाने सुनिया ही प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश कुथु ते आया रुंझुनुआ। इसी गीत के बाद अहां फिर ते अपनी गलबात ऊपर वापिस आई हूँ, कने समय भी अपनी रफ्तार लेकर ही चले तो जरूर अहां भी समय की रफ्तार कन्नै चलने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुम तक पहुँचा देना।

दर्शकों की ते फरमाइश पहुँचाई है अशोक जी तक कने ए फरमाइश तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने।

श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने गलबात अहाँ करा देना राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे च कुछ पुरानिया जिहड़ा खेला न इन्हां उपर अगर अहाँ जिक्र करिए कुछ ना कुछ पुरानिया जिहड़ा यादा न सफरी ते ताज़ा हो जांदियां न। गिली डंडा अगर अहाँ गल करिए जिस जिस दी पसंदीदा खेल है गिली डंडा तो तुसीं जरूर याद आई होना कि अहाँ इस खेल जो इन्ना खेलते थे तो जरूर पुरानिया जिहड़ा यादा न से ताज़ा हो जांदियां न। कंचे ज़्यादातर कंचे खेलना भी तुहां जो बड़े पसंद हैं। छुपन छुपाई की गल करिए छुपन छुपाई खेलना भी तुहां जो सबसे अच्छा लगता है। कन्नै खो खो की गल करिए या कबड्डी की गल करिए तुहां जिहड़े से स्कूल च भी खेलते हैं। कन्नै हर कुसी की अपनी अपनी खेल है तो जरूर इन्हां खेलों जो भी खेलना जिहड़ा है अहां वास्ते जरूरी है। कन्नै अहां दा जिहड़ा स्वास्थ्य है सभी फिट एंड फाइन रहिंदा है। इसी कन्नै अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अग्गे बढ़ांदे न कन्नै अगली जिहड़ा फरमाइश है सियाहां तक पहुंची होवे बैजनाथ ते कन्नै तिन्हां दा नाम है टीटू जी तो जरूर तिन्हां तक अहां ये फरमाइश पहुँचा देना।

श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। तो सारे जी पता है कि इस कार्यक्रम का जो समय है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो इसी कन्ने तुह सारे अपनी रेडियो दो शशि जो दे अनुमति कन्ने हमेशा खुश रहे, क्योंकि खुश रहना जरूरी है। जिंदगी का जो सफर है ना से खुशियां नहीं निकलियां तो बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जिंदगी जड़े से जड़ा हम जो बड़े सारे सबक जड़े से दे करी जानती है, हमेशा खुश रहा कन्ने अपने माता पिता का मान सम्मान जड़े से करते रहा। इसी कन्ने अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
2: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड माँ कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
1: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
2: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
2: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
2: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

जन्माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे 2 शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने 2 शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है,

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुझेगा कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हाँ सभी होने आ रहा है, सभी श्रोता घंटा कैसे श्रोतों तो है सब, उम्मीद करना है तो सब घरे भुने और कुशल मंगल भुने, अपने घरे हस्त पुष्ट तंदुरुस्त भुने हिन, अपनी सेहत का ख्याल खास कर रखो कर दे भुने हिन श्रोतों, जो कि तुंदा सभी पहला दोस्त, तुंदा सभी पहला मित्र, तुंदा सभी पहला अपना, तुंदा सभी पहला रिश्ता तुंदा अपना शरीर है श्रोतों। अगर ये स्वस्थ है, ये स्वस्थ है बिल्कुल, और ये स्वस्थ स्वस्थ मंज मस्त भी आ तो जिंदगी बड़ी खरी लगती है, बड़ी आसान लगती है, बड़ी स्मूथ लिखी है सो चलती है। और अगर तुंदा शरीर ठीक नहीं है श्रोतों, चलो आक उम्री के हिसाब है कि श्रोतों सो बलते न कि ते करिए सू चलना फीकी सो पिंदा हा, जने उम्र बुझगन दे तने चलो दुख बीमारी लगन दी। लेकिन तो एक गल कदी नोट करी श्रोतों, अगर तुंदे घरे दादी परदादी या फिर दादा या नाना नानी हिन जो कि सियाने हिन, है ना, अजकल तो नौजवान ही नाना नानी ने जो कि थोड़े सियाने हिन जिन्हें सो दौर रुआ तियाँ पुछे तियाँ कदी ना हॉस्पिटल रही शक्ल भी ना जा चु रही। हाँ मेरी मम्मी रे नानी थी है अभी सो स्वर्गवास हिन, सो बल्दे इनकी मैं कदी बल्दे थी है कि मैं कदी कि यह सो हॉस्पिटल धर्मशाला हॉस्पिटल जा चुरो भी नहीं कि किदे किदे बंदा हा तिंजो माड़ी मोटी अभी अभी तो तैयारी डेथ बछूरे काफ़ी टाइम बुछगो है। लेकिन सो दस दे थी कि जहने मतलब तिंजो हल्की फुल्की करखा दुख बीमारी लगदी भी थी तो सो सिर्फ इटिए योल बाजार की सो दवाई ले लेंदे थे, यानी कि इतनी मेजर बीमारी की सो तिंजों के दी पई ना। और रस वो आजकल आज मेरा थोड़ा टांडे काम थो तो टांडे गाना बुआ शो तो टांडे में हाल बेहाल हेरी करे कि आसो आत्मा काफ़ी दुखद हुई, मेरी आत्मा जो रियलिटी आ काफ़ी मतलब ठेस पहुँची कि बारह री कंट्री और हिंदी कंट्री में कयो ज़्यादा फर्क है। मतलब बड़ी मोटी मोटी गल तो ना कर ला, लेकिन ये गल मु फेसबुक रे जरिए भी किया सो तुसु तक पहुँचाने हैं शो तो सो है अपना कैमरा ज़रूर ऑन कर ले। लेकिन पहले आगाज़ कर लेंदे और तुसु सब भी श्रोताओ दस इंदन की तो है लाइव कार्यक्रम में किया सो जुड़ गया हैं 7081887091 पर तो है कॉल कर सकते हैं इन शोतों। जी बिल्कुल, हाँ सचिन कपूर आइंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ है तो सब श्रोता सो की जुड़ी सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत की सो हो नहीं सकते हैं। होने वास्ते जुड़ने वास्ते 7081887091 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत हो नहीं सकते हैं। चल दिन और धर्मशाला रे मौसम री गल कर लेंदे छोदों, इस समय लगभग किया सो टेम्परेचर दसो करते हैं कि तापमान की सो 19-25 डिग्री रे बिच किया सो बणो करता है। और सोगी सोगी छोदों बिल्कुल इस समय 19-25 डिग्री सेल्सियस रे बिच किया सो तापमान बणो करता है। और नमी रे स्तर की सो 90% रे करीब हाशो तो थोड़ी उमस किया सो महसूस बच्चो गर्दी बुने तुसो कजो की हाँ भी तैये जी। और भी बहुत जानकारी बतेरी जानकारी ही ना सुले सो सब तुसो गया है ज़रूर शेयर कर ले साझा कर ले। लेकिन तत्व पहले शो तो लेके चलते हैं तू सभी जो कार्यक्रम रे इस गीत तारी किनारी आगाज कर दें छतो बिल्कुल इंजा गीता होगी बने रहे जुड़ी रहे आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे

ਦੱਸੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਏ ਸਭ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਹਵੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕਨੈਕਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕੇ ਔਰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ 7 0 8 8 8 7 0 9 ਅੱਖ ਪਰ ਨੰਬਰ ਅੱਖ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਨੋ ਜਨਾਬ 7 0 8 8 8 7 0 9 ਅੱਖ ਪਰ ਤੋ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ੋਤਾ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ क्षेत्र की जानकारी अस वो की जरूर साझा कर सकते हैं। तो चलिए जी थोड़ा करिए है भी अवेयर पूछ गए हिन्न और फेसबुक के जरिए कुछ एक खास जानकारी हिन्न सो तुस होगी पहले पहुँचते हिन्न बहुत सारी खास जानकारी जो असु तुस तक पहुँचानी हिन्न शतों रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा सिग्नल री दिक्कत हमेशा की असु जरूर इन दिया लेकिन फिर भी बल देखिए डरना ना बंदा सिर्फ चलना बंदा हा तो कुछ खास जानकारी तो हो गया है शेयर कर दे हिन श्रोतों वेलकम बैक जितने भी इन श्रोता हिन जो उस होगी इस समय जुड़ रहे हैं फेसबुक के माध्यम तो और इन बिल्कुल रेडियो के माध्यम तो जुड़ रहे हैं इन श्रोता है ना तो खास जानकारी और लेकर चल दे तू सभी सो सभी जो शतों हटसर थो मणिमहेश तक की ऐसा 2,800 रुपया बुना हा घोड़ा घोड़ेरी सवारी अधिक अगर अगर ज़्यादा वसूली कसकी करी तड़ी तो है शिकायत की ऐसो कर सकते हैं बिल्कुल श्री मणिमहेश यात्रा मंच अगर तो है चल रहे हैं तो इन गलर खास ध्यान की ऐसो जरूर रख शतों जो है तुस हो शेयर लगे हिन करना श्री मणिमहेश यात्रा रे दौरान शतों श्रद्धालु री सुविधा वास्ते की ऐसो हटसर थों मणिमहेश तथा यात्रा मार्ग रे विभिन्न पड़ावों वे बीच की ऐसो कूली और घोड़ खच्चर थों यात्रा वे सम्मान रे ढुलाई वास्ते की ऐसो दरा निर्धारित करी गई हिन शतों निर्धारित कैंसो करी दीती हैं निर्धारित दर रे अनुसार शतों श्रद्धालु यात्रा रे दौरान की ऐसो समान ढुलाई अथवा घोड़ा खच्चरी सवारी री सुविधा ले सकता है। SDM भरमौर अजय कुमार सिंह ये श्रद्धालु तो अपील करे हा कि मणिमहेश यात्रा रे दौरान अपनी सुरक्षा रा विशेष ध्यान रखन तिन्हें बोलो कि यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चरी आवाजाही वे दौरान की ऐसो सावधानी भी बरतन है ना सावधान रहन और तिंगे श्रद्धालु थों निर्धारित दरारा ध्यान रखने और किसी भी प्रकार की समस्या अथवा अधिक वसूली भूने पर किया सो संबंधित नियंत्रण कक्ष में किया सो शिकायत दर्ज करवाने की अपील किया सो करे हर्षोतों मणिमहेश न्याय द्वारा निर्धारित दरारे अनुसार हटसर थों धनछो तक किया सो कुल जो कुलीरा किराया बुना कुल शोतों सो 500 रुपये बुना 70 किलोग्राम तक सामान रहे वास्ते घोड़ा खच्चर रा किराया 800 रुपये तथा सवारी रा सवारी रखिए सो 1100 रुपये प्रति सवारी निर्धारित भुआ हा शोतों इस प्रकार शोतों हट सरथों सुंदरासी तक के असो कुली कुली वा जो कुल किराया है शतों सो 900 समान ढुलाई रा 1000 तथा 1700 रुपये प्रति सवारी निर्धारित हुआ है। हर सरथों गोरी कुंड तकरी कुली वा किराया 1100 रुपया 70 किलोग्राम तक समान ढुलाई वास्ते 1200 रुपया और घोड़े खच्चर री सवारी वास्ते की 2500 रुपये प्रति सवारी की ऐसो निर्धारित हुआ है। हर सरथों मणिमहेश तक की आसो कुलीरा किराया की आसो 1300 रुपये समान ढुलाई 1450 रुपये तथा सवारी रा किराया 2800 रुपये प्रति सवारी आशो तो बिल्कुल ते दरा के सो निर्धारित हुई और ये दरा के सो है तुस तक पहुँचाई ही शो तो ये सब बन रहे ने समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गए और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा हुनो करते हैं बाखूबी बिल्कुल हुनो करते हैं रेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच और खास कर शो तो अपनी ही बोली मंच यानी कि अपने ही डायलैक्ट मंच अपने गदी डायलैक्ट मंच लेके चलते हैं शो तो हाँ आज कल शेयर करूँ करता तू तुस होगी टांडारा दौर बुआ आज मेरा टांडा गाना बुआ शोतों और टांडा में की ऐसो बहुत दयनीय हालत की ऐसो हेरने जो मुड़े हाँ तड़ी रिपोर्ट लेने खड़ो थो अक्ता
जो तड़िए रे जो जस डिपार्टमेंट में आऊँ गुछूरत हो है ना, रेडियोलॉजी सो डिपार्टमेंट है, तस डिपार्टमेंट रे HOD हो कि मैं गल करी, जो कि बहुत सारे लोग कम से कम 20-25 लोग कैसी है क्या थी ये सो परेशान थी है, परेशान कहती होती है कि तीनों तड़ी कोई बंदा ना थो, जो कि जो इंटर्नशिप वाले थी है, इंटर्नशिप वाली जो कुड़ी थी सो छुट्टी पर थी और स्टाफ बड़ा कम थो है ना, आउटसोर्स वैसे नहीं तड़ी ता बहुत कम स्टाफ थो, HOD रहे बोलना कि बहुत कम स्टाफ है, 3 बजों की ऐसो तड़ी कोई पर्सन नहीं है बेखुरा है ना जो रिपोर्ट दे सका। और फिर भी तड़ी आसपास की ऐसो मन होगी गलबात वो इधर थी नहीं गलबात रहे दौरान दसू की असू तूना बुरा हाल है कि असू अब ग्लब्स के न सो भी बाहर हथों खरीदना पे कर देना, सरिंजा के न सो भी बाहर हथों खरीदना पे कर दी, हालांकि पहले क्या ये सब चीज़ें के न सो ये सब सुविधा के न सो टांडा अंदर मोड़ी गंदी थी, लेकिन अब ये सुविधा के न सो टांडा अंदर ना मोड़ कर दी। मेरे ही एक जानने वाले न और निजी अपने दोस्त भी जीवन जो कि योल टीका चतैड रहने वाले न, तीयारी वाइफ रेकी सो डिलीवरी हुई तीन भी जो कि ये गल शेयर करी फोन अंदर कि हर एक चीज़ किया सो डिलीवरी रे दौरान बाहर थों किया सो लेना पे कर देहा। और कुछ एक चीज़ है कहना मतलब बहुत बुरी हालत है कुछ एक चीज़ जो लेकर और तीन दसों की पहले क्या तो ये सब चीज़ अगेन सो अंदर थी और वाकई में पहले ये सब चीज़ अगेन सो अंदर मूल दी थी, लेकिन कुछ एक टाइम थों किया सो ये चीज़ अब ना मुड़ू कर दी, न जाने कड़ी किया सो बदलाव बुचू करता सिस्टम मंच। सो गुजारिश करना चाहता अगर ये मेरी गल पुछदे आ तो ये थोड़ा करे सिस्टम किया सो हेरना पैना हाँ, वरना अन्य था कि सो जितने भी आम मनु तड़ी खड़ू रही थी 20 थे 25 मनु जने मैं गल करी सो सब मुंजले चले आ, सब अपनी अपनी समस्या के सो दसना लगे कि असू ये समस्या असू ये समस्या असू ये समस्या, तो चलिए समस्या रहा समाधान करना किया सो तड़ी कंसर्न पर्सन किया सो त्यारा डिपार्टमेंट और तीनों सो हेरना चिंता कि असू क्या क्या समस्या हैं और किए किए हैं सो तो त्यारा माइंड में के सो चीज़ा है पाई थी कि भाई ये समस्या इच्छू कर दे मनु, बाकी काम करना तो सरकार रहते है ना, सरकार चाहे तो बहुत बेहतरीन सुविधा तड़ी दे सकते और सरकार और डिपार्टमेंट ए दो ही चीज ए दो ही अगर मिलेगा अंत मनु जो किया आम मनु जो किया जो कि वोटर तस्सी हो किया सो सब सुख सुविधा के आंसू मोड़ सकते हैं और सो इतना हताश इतना परेशान इतना निराश किया सो ना हुआ, एक कोशिश करना चाहती है सरकार और प्रशासन जो मिल करे। बहरहाल कार्यक्रम में इंदी अपनी गप्पा के ना सो चल रही हैं और हूँ सचिन कपूर हाँ तू सुसो की लेकर चल दे तू सब भी जो शोध हूँ जो कि कार्यक्रम मंच अब ऐसू थोड़ा करे हगों भी किया सो ज़रूर बढ़ना है और सोगी सोगी तू सोगी सब अग बाकी गल्ला भी कैन सो तुसो की जरूर लानी इंशो तो बाकी जानकारी कैन सो भी तुसो की असू जरूर शेयर करनी ने साझा करनी हिन, ताइए थोड़े करी आगू चलते हिन शो तो और कार्यक्रम मंच अब प्यारे दे गीत वो की जरूर साझा करते हैं।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और एक कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप अगेन सो बिल्कुल लाइव चल रही तुम्हें वीडियो सेट में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आग मौके फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहता कार्यक्रम मंच श्रोतों बहुत सी जानकारी जो है तुझ तक पहुँचाऊ करते हैं और आगू पहुँचानी भी हैं तो है सब श्रोता सो की जरूर मिल सकते हैं जुड़े सकते हैं 7081 8179 पर कॉल करे करे नंबर एक मौके फिर तो वो गया हूँ शेयर करनो हाँ साझा करनो हाँ 7081 8179 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की ऐसा होने सकते हैं। बहरहाल लेकर चलते हैं श्रोतों तो सो थोड़ा करे और हगूँ और नेपाल में वाकई में नेपाल में जो हुआ इसी हो गया है सब क्या ना सो काफ़ी अच्छी तरीके होगी रूबरू हिन और दसू करदे इन शोतों खबर मन जो है भाई निकल कर ही चु करदे जो इंदे एक्सपर्ट ने सो एक टू करदे हिन कि ऐसा खतरा कि सो भारत में भी इसी सकता है जो कि हाँ बिल्कुल ले तो है बिल्कुल ठीक हूँ करदे हिन इस समय जी बिल्कुल इसी सकता है और इन्हीं कारण है कि कुछ एक झील लगे ना सो बड़ी गई हिन यस बिल्कुल हिमालय में 676 ग्लेशियर झील के ना सो बड़ी गई हिन अक्सोती भारत में खतरा इड़ी भी किया सो घाट नहीं है ये दसू करते हैं छो तो 676 ग्लेशियर झील लगे ना सो हिमालय में बड़ी गई हिन छो तो एक अपू एरी लिया पे पहाड़ वे झरना के ना सो असुरक्षित हैं पूरी जानकारी तो सो गया है बिल्कुल शेयर कर ले शोधों बिल्कुल साझा कर ले दसो कर दे इन शोधों इस समय ये वाकई में नेपाल में हाल रही विनाशकाली बाढ़ों की ऐसो हिमालय में जमा पानी और जो पहाड़ रे खतरे जो फिर सामने किया सो लेकर या आँख मौके इस बीच श्रोतों वाकई में 676 झील है सो बढ़ गई न और जहने ये झील फटनी न जहने ये झील ओवरफ्लो बोनी न तो तहने नॉर्मल दे गया लगी दिक्कत किया सो बोने ही बोने हैं श्रोतों तो भारत में भी आ किया सो घट खतरा नहीं है इन दे श्रोतागण हंस होगी कनेक्टेड हैं कुछ दिन कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलू करते हैं नमस्ते जी हेलो हेलो नमस्कार जी हेलो नमस्ते जी माफ़ करे जी तुंदी आवाज़ नहीं चु कर दिया और असू तुसु डिसकनेक्ट किया सो करना पैना है दुआली तो है कॉल कर दें तो ज़रूर कनेक्ट कर ले है लेकिन क्या करिए फिलहाल तो है हम मजबूर बच गए तो सो डिसकनेक्ट करने हो क्योंकि आवाज़ तुम दिखिए सो ना है जी असू तक पूछ दें तैया कार्यक्रम जो आगो बढ़ाते हैं छो तो कुछ एक और जानकारी के सो है दसो कि शेयर करते रह ले साझा करते रह ले लिख रही चलते नहीं दे इतों अगले शो का असू होगी कनेक्टेड इन पूछ दिन कौन बोलूँ दिन और कड़ी थों बोलूँ दिन नमस्ते जी
1: नमस्ते सचिन जी क्या हाल
0: बढ़िया जी बढ़िया तो बल्ला तो ठीक ठाक न
1: ठीक ठाक
0: अच्छा जी कौन बोलूँ दिन और कड़ी थों बोलूँ दिन
1: कमलेश कपूर बोल रहा है मैं लंगरोड खनेरे से
0: अच्छा कमलेश जी और कमलेश जी राजी बाजी खनेरे रे सब मनु ठीक ठाक न
1: सब ठीक ठाक नहीं
0: अच्छा कर करे लग रहे हैं
1: कर लग रहा है बस यही है घूम शुरू होते हैं अगर बिल रह रहे टाइम आए तो हम बुरे क्या कमाने पता नहीं ना रही ना
0: अबे चलो ना जब करने दी उम्र है जी है ना बिल्कुल
1: आवाज कटू हो रही
0: है अच्छा मेरी आवाज कटी हुई है अब हो सकता है सिग्नल री दिक्कत हो जी है ना जी
1: अब हो सकता है
0: जी कमलेश जी
1: पहले की लगी केड़ी हल्की हल्की
0: अच्छा बरखा लग रही है
1: हल्की हल्की लगी लगना शुरू में लो चल गाने होने को था फिर ये गाई रहा क्या जुबार बन गया
0: अच्छा जी
1: वो सचिन गाना होना तो क्या कर लगा गोरी है पहाड़ी का बसना
0: अच्छा, कैसा लगा गोरी ये पहाड़े दा बसना, क्या बात है। कुछ यादा ही नहीं इस गीता होगी, या फिर यही चलते चलते दिल बल्लू तो कि इस गीता जो हुन लेंदे नहीं, या
1: ना ना
0: कुछ
1: कुछ
0: एक।
1: पुरानी यादा चले आई ना जवानी री।
0: हाँ,
1: तो
0: क्या बात है।
1: मते बिना वैसे प्रोग्राम तो हुनर ना, मते बिना फोन करना चाहता हूँ। चल मेरे लिए और भी नो कस्टमर जुड़े हैं ना, सो भी जुड़ी रहा था ठीक है सर, पुराने ने के नहीं।
0: चलो जी, कमाल है। तुंदा भी, तुंदा अपनी जगह मोल ते यार, अपनी जगह मोल है ना।
1: कश्मीर
0: सभी रे अपनी अपनी
1: तुंदा तो
0: जगह।
1: बांग्लादेश तुंदा टैलेंट, तुंदे टैलेंट भी क्या प्रशंसा करनी, तुंदा टैलेंट बहुत अच्छा बोल रहे हैं।
0: चलिए जी, इंदा
1: दूर
0: कुछ
1: तो है ये ती सीटा तो लोग क्या है तुझे तीन जुड़वे ना।
0: थैंक यू सो मच जी, तुंदा प्यार है, तुंदा आशीर्वाद है जी। बाकी इस नाचीज में कुछ ऐसे, कुछ ऐसा खास नहीं है, सिर्फ तुंदा प्यार में जो खास बनाइंदा, और तुंदा ये जो सच्चे माना था आशीर्वाद निकलते, जो भी मेरी ज़िंदगी में दुख तकलीफ है इन दिन, तिन्हों मतलब तिन्हों की लड़ने व तिन्हों की झगड़ने रह की ऐसा क्षमता बनाइंदा मेरे, बाकी कुछ नहीं है जी।
1: तुझ तो गलो कुछ नहीं हूँ,
0: जी
1: कुछ ही
0: जनाब,
1: अगला
0: जी।
1: दोरा स्कूल पर भी ना कि यो ना तुम्हारा
0: हाँ बिल्कुल, 10वीं तक दौलाधार स्कूल पढ़ता जी, पढ़ रहा। और फिर
1: क्लासमेट नवनीत नोट तुम्हारा क्लासमेट है ना
0: कहना जी,
1: नवनीत नवीन
0: नवनीत।
1: नवनीत। हेलो
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: नवीन
0: अच्छा, ना इन द सीनियर थी ये सोची जो पटवारी लगुरेन।
1: नहीं अच्छा
0: हाँ बट सीनियर थी ये इन दे ना जी।
1: सीनियर थी ये दोस्तों।
0: हाँ जी, हाँ जी, इन दे सीनियर थी। हूँ 10वीं तक धौलाधार स्कूल ले पढ़ रहा जी, और फिर मैं +1 +2 किया सो केंद्रीय विद्यालय योल कैंट थाऊँ कर रहे, KV स्कूल था हूँ।
1: दोनों में तुसो की कार्तिक पढ़ो है पर एक ले रहे तो नहीं।
0: कार्तिक, बिल्कुल जी कार्तिक पढ़ रहे। कार्तिक भी असोगे असू अ क्लास सीनियर थी है कार्तिक जी।
1: अच्छा तो कार्तिक और क्या, कार्तिक मेरा गुरु है ना। हाँ
0: अच्छा, कार्तिक तुंदा हल्का मुन्नू,
1: जी हाँ जी
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: अच्छा नवीन जेड़ा तो मेरा जवाई है।
0: अच्छा, नवीन जी तुंदा ज्वाइन, क्या बात है।
1: हाँ जी
0: कार्तिक जी कड़ी बंदे आजकल।
1: कार्तिक MBA कर रहा, नौकरी पर तब वो करनी ना
0: हाँ जी,
1: 6 महीने लंदा सो गोवा था, बाकी काम कर रहा था हमको तो अपना तेरा टूरिज्म का तेरे था
0: योगा रहा।
1: योगा टूरिज्म का
0: अच्छा,
1: 6 महीने लंदा 6 महीने गोवा।
0: गोवा, क्या बात है। चलिए बहुत ही अच्छी, बड़ी खुशी हुई। पर सभी पहले दिन का रिश्ता जो हा सो हा, लेकिन रिश्ता ये और भी ज़्यादा गहरा हो चुका। क्योंकि दो इन अकेले, दोनों इनके सीनियर थी और अच्छे स्कूल टाइम में ही होगी, अच्छे इनके रिश्ते थी। अल्ले भी नवीन जी होगी तो अल्ले भी वार्तालाप की सो बंदे रहते हैं कभी कभी।
1: हम जो कार्तिक बोलता हूँ ना फुटबॉल खेलते हैं तो बंदा सचिन भी सुखी खेलता फुटबॉल ना सुखी
0: हाँ बिल्कुल, बड़े अच्छे
1: सुखी
0: फुटबॉल प्लेयर थी है कस की टाइम। तो जवानी री याद, अपने भी याद ताज़ा करे, और आज मेरे बचपन री याद भी ताज़ा कराई थी।

0: चलो और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कैंसर चल रही, बिल्कुल लाइव एक कार्यक्रम चल रहा और श्रोता हेरे लिए रिश्ते के सुखड़ी थो कड़ी किए किए बने गंदे इंदे रेगुलर श्रोता थी है। आई थिंक 4-5 साल थो रेगुलर किए सो इस कार्यक्रम जो हूं दे थी है और आज की जिक्र किए सो इं थोड़ा डीपली किए सो जानू पुछू मुंजो होगी और आज पता लगो कि कार्तिक होगी है बहुत कार्तिक जी होगी बहुत फुटबॉल की ऐसो है खेल रहा सो तो इंदे सीनियर थी है नवीन जी इंदे सीनियर हिन थी ये सो भी सीनियर है ना लेकिन कार्तिक होगी की ऐसो जो कि कार्तिक रे जो क्लासमेट थी है जो दोस्त थी है सो इंदे पड़ोसी हिन और बहुत फुटबॉल की ऐसो तेने खेल रो सो तो मुझे बचपन लेकर ही मतलब एंड अब तो चलिए शेड्यूल तो सब बारह बज गो कि अपने आप वास्ते है टाइम ना कटी सकूँ करते हैं लेकिन वाकई महीना सो दौर बड़ा प्यारा था सो दौर बहुत अच्छा था जहने है क्रिकेट खेलते थी है जहने है फुटबॉल खेलते थी है ना ताऊ जितने भी इस समय युवा होने कर दिन से सो तीनों ये बनना चाहूँ कि अपनी गेम की ऐसा ज़रूर रखा और ऐसी फील्ड में भी ज़रूर गच्छा कि जड़ी तुसु ये गेम में खेलने का मौका कि ऐसा ज़रूर मिला है ना तुंदा जो कि जो खेलने अंदर जो अक जिज्ञासा बंदे आशो तो सोना मरदे आ खेलने अंदर जो अक तुसु फ्रीडम मिलते आ माइंड फ्री मिलता हा फिजिकली तो है फिट रहते हैं बहुत सारी चीज़ें बंदे अगर तो है कोई गेम अपू सो गिर रखते ना और खास करता सी डिपार्टमेंट में या था सी फील्ड में कि असो हगों बड़ी गंदे कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा सचिन कपूर सो की हूँ कर दिन आइए जी यारी फरमाइश में किया आसो है सब भी प्यार दे गीत के सो हूँ लेन दिन बने रहे जुड़े रहे आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे
1: मन की मन उत्तर।

0: शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और हम सचिन कपूर है ना चीज आर जे सचिन कपूर तो सब हूँ कर देन कार्यक्रम जो है ये कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं और बहुत प्यारा दे गीत कनैल राणा जी री आवाज़ में तो सब भी हूँ शोतो अगले शो तो हो गया है रूबरू बुंदे हिन और तुसो भी रूबरू करवंदे हिन। नमस्ते जी।
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी और ठीक ठाक।
0: हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया।
1: तो बोले तो हाँ यहाँ नवा नंबर भेज गया।
0: हेलो अच्छा
1: तुम्हारा गीत सुनी कर यहाँ ना।
0: हाँ जी
1: नहीं रखा तो हाँ मैं आई नहीं नंबर सरे थे।
0: हाँ जी हाँ जी
1: तो तुम्हारा गीत लग गया दुकान ना।
0: अच्छा
1: मैं बरखा से खड़ो गई
0: जी
1: जनास पूछी ना
0: जी
1: ना लड़ ए कुछ लग गया गाना आ गुंजन तो लग गया बोलिया।
0: अच्छा
1: करी बरखा टीजे नहीं करे चले आई।
0: हाँ जी
1: करी मैं तो हूं क्या चलाना है कने रेडियो की लीडा लाइने कभी नहीं सुनिया गाना।
0: अच्छा
1: ओ जी तो हर से को हदा स्टाफ तबे ही हुन और सी स्टेशन लाने तो दिल नहीं करा दा।
0: हां बस जी ए कोशिश रन
1: दिन
0: दी की
1: तो जितना सुन दे रहा ना। हां
0: कोशिश रहिंदी हिंदी की अक मौके कोई हिंदी गिरफ्त में चले आ तो फिर यह छड़
1: देने
0: इन।
1: हां कोई मते दे नहीं आया सुन दे ना उनने।
0: हां जी
1: कोई नहीं ना क्यों होया।
0: अच्छा
1: अपना दिल कर रहे रात दिन इसी गाने सुन दे रहा ना कने तोड़ा स्टाफ ही बढ़िया छा गल्ला तोड़े स्टाफ पे दिया।
0: चलिए जी धन्यवाद जी एप्रिसिएशन
1: धन्यवाद। कहाँ लिखने आ रहे थे बोला दे।
0: अच्छा क्या बात है क्या नाम
1: जी
0: तुम्हारा।
1: ना दसना तो तुहा कड़ी मारे कर रहे हो तो अगे ना दस गए।
0: चलिए जी कदी खने आ रहे साइड ले दे जरूर दे।
1: खातरी रोड नहीं जानता रास्ता।
0: हाँ जी हाँ जी
1: इतने तो आने का ना मेरा नाम गोमती।
0: अच्छा जी
1: सारे पता है गोमती ने दीदी की है ना तो हाँ।
0: हाँ जी चलिए ठीक है जी
1: ठीक ठीक
0: बहुत बहुत अच्छा लगो जी तुसो की गल करी करी।
1: हाँ जी ठीक है।
0: अच्छा जी
1: हाँ तो अरे गाने सुनी करी ना।
0: हाँ जी
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: चलो जी ऐसा सब के लिए सुबह
1: इसी स्टेशन लाई है ना तो ने स्टेशन आने नहीं हाथ लाने
0: नहीं लाना था कयो लाना हाथ।
1: ठीक सारे गाने तो नहीं ना सुने सारी गल्ला ही बढ़िया प्यारियां ने।
0: चलिए जी प्रयास कर दे दिन देना है।
1: ठीक ठीक ठीक
0: ठीक है जी धन्यवाद। शोतों जहने भी इस तरीके रे एप्रिशिएशन कॉल इन दिन जो एप्रिशिएट कर देना सो हवा के में थोड़ा करे दिल किया सो और ज़्यादा खुश किया सो बुझ गंदा है और न केवल लक मेरा ही जितने भी बाकी आरजे हिंद त्यारा भी दिल किया सो खुश अवश्य बुंदा है अक मोटिवेशन किया सो ज़रूर मोल दे है और शोतों में बता ये मानना है कि जहने भी जाए सो घरे बुआ जाए घरे बून जाए घर तो बाहर बून जाए घर रे मोटे बुनना ये बड़ा ज़रूरी है अपने हल्के जो कि है सो मोटिवेट करना मतलब सो कोई भी काम करू कर दे तीनों शाबाशी की सो जरूर देने सो तो क्या बंदा क्या मनोबल की सो बड़े गंदा हा कसी भी वह ये नहीं कि हाँ ये 35 साल रे या ये 40 साल रे या अपनी नुखा जरूर मोटिवेट करा तो है मोटिवेशन दिया ता हो जरूर शाबाशी दे अपनी दुआ जो कि असो जरूर शाबाशी दिया है ना। कई पेरेंट बंदे ना कि आओ कमाओ दे तो कमाना दे कड़ी मंजो मतलब ऐसा ना ये माहौल बनाए कर रखा कि हाँ अज तुंदी कुड़ी है कि अज तुंदी नुख है किया सो ये काम करो तो शाबाशी किया सो ताहो जरूर दिया ताकि सो अगली बारी और ज़्यादा किया सो खुश बुझ करे और ज़्यादा किया सो अपने दिमाग चला के यार मुझे ये गलत हूँ शाबाश मुड़े तो मुझे ये गल किया सो और बेहतर तरीके होगी किया सो करनी है इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहता जड़िया इनका वर्क प्लेस आ तड़ी अगर इनके जो ओनर ने इन जो इनका डायरेक्टर ने या ओनर ने है ना जो सीनियर ने सो शाबाशी दिन शो तो इंसान रहा मनोबल किया सो बड़े गंदा है और ज़्यादा मजा किया सो चलिंदा है। बहरहाल तो सब बन रहे ने इस समय आर जे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम में बिल्कुल इंदी अपनी गप गया ना सो हूँ गर्दन अपने वीडियो सेट में थोड़ा करे हगू किया सो है ज़रूर चलते हैं शोधों और कार्यक्रम मंच। अब समय वाकई में पता नहीं चलता ना शोधों के कहने की सो समय बुझी गुआ लेकिन फिलहाल समय बुआ हा ये प्यारे दे गीत होना नहीं रहा तो सुसपी जो तो बनी रही जुड़ी रही रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने बन रही और गूंज अजित्य बिंदा प्यारे प्यारे श्रोता सोगी बन रहे जुड़ रहे तैयारी।

बहुत प्यारे दे गीत है सभी हुणो श्रोतो वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच। कार्यक्रम जो आगे बढ़ेंदे इन श्रोतों और कुछ एक जानकारी के इन श्रोत सो किया है भी शेयर किया सो कर लेंदे हैं बहरहाल समय बुझगो लेकिन आइए श्रोतों समय की आसू कसी वास्ते न रुकता था सु दूसू वास्ते कि रुक ही सकता लेकिन एक जानकारी की सुगंद गंदे जरूर तुंदे मध्य के सो आऊँ रखना चाहता हाँ शो तो स्मार्ट सिटी धर्मशाला नगर निगम रे वार्ड नंबर 11 रे रामनगर क्षेत्र में किया सो कूड़ा कूड़े री समस्या किया सो मुकू नगर दे ये बढ़ते गच्छू करते हैं शो तो कतियो स्थानीय मनु रहे बलना हा और स्थानीय मनु रहे अनुसार के सो कुछ किराएदार घर तो निकलने वाले कूड़े रा नगर निगम वे डोर टू डोर व्यवस्था माँ देने रे बजाय के सो सड़क किनारे बैग माँ के सो रखू करते हैं और आरोप आ कि कुछ मनु के सो कूड़ा उठाने रा निर्धारित शुल्क बचाने रे वास्ते कि सो ऐसा करो करते हैं कि सड़क किनारे के सो कूड़ा रखे करते हैं ये गल वार्ड नंबर 11 रामनगर रही हा शो तुम जतियो सो तो कूड़ा साइड में रखू करते हैं आवारा कुत्ते के न सो बिल्कुल तियाँ बैगा जो कि सो फाड़ू करते हैं कुछ नाले में कि सो कूड़ा गच्छू करता कुछ किनारे में सो कूड़ा गच्छू करता हा तो इनके अपील हा वार्ड नंबर 11 रे रामनगर क्षेत्र रे जितने भी किराएदार हैं तिया थो जो कि स्थानीय मनु हो गए सो आरोप लाओ हुआ कि एक काम के सो इस प्रकार हो गए करो करते हैं तेरा डोर टू डोर के सो गड्डी छू करते नगर निगम रे तो जरूर तथी अंदर के आई थिंक 150 रुपये 50-200 रुपये वे बिच के सो अमाउंट रहा है यार तो सेग्रीगेट करी करी के सो कूड़ा जरूर दिया तो है गीला कचरा और सूखा कचरा क्या सो अलग अलग जरूर दिया धोनी बैगा पाई करी और ताकि तुंदा ये धर्मशाला तुंदा ये रामनगर गया सो हेरने में साफ सुथरा और स्वच्छ लगा ये प्रयास किया सो जरूर करा और अब समय बुझगो तो सब भी थो अलविदा लेने रहता गंदे गंदे ये बोलना चाहनो कि पर्यावरण जो कि सो साफ सुथरा जरूर रखा सो तो अधिक पेड़ किया सो जरूर ला सो तो और माता पिता री सेवा की सो जरूर करा किसी का बुरा किया सो मत करा सो तो अपनी और तो हमेशा प्रयासरत रहा कि तो है किसी का बुरा किया सो ना करना हमेशा हर किसी का खर करने रही और खुश रहने रही और खुश करने रही अपनी वजह तो किया सुतुन की वजह तो किया सो कोई ना कोई व्यक्ति की सो जरूर खुश रहा ये प्रयास किया सो जरूर करा सो तुमको जो कि सौग्य किया सो कुछ न गणा धन दौलत ये सब मुँह माया सो तो रे सिर्फ और सिर्फ इस लोकरी किया सो कथा बेहतर बनने वास्ते बेहतरीन बनने वास्ते अच्छे कर्म करने की सो बहुत जरूरी है इन शब्द था हूँ सचिन कपूर ले लेने तो सो था इजाजत हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे और रेडियो गुंजन जो ही हुन दे रहा नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन पिंकी के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हरसद से मणिमहेश तक 2,800 रुपए में होगी घोड़े की सवारी, अधिक वसूली पर दर्ज करवाएं शिकायत। 3 जिलों में शुरू होंगे मोबाइल रिसोर्स सेंटर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की होगी पहचान। हिमालय में 676 ग्लेशियर झीलें बढ़ी, 130 भारत में, खतरा यहां भी कम नहीं। पानी के बिल में अब नहीं चलेगा मैनुअल खेल, ऑनलाइन बिलिंग अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हरसद से मणिमहेश तथा यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों के बीच कुली और घोड़े खच्चरों से यात्रियों व सामान की ढुलाई के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। निर्धारित दरों के अनुसार श्रद्धालु यात्रा के दौरान सामान ढुलाई अथवा घोड़े खच्चर की सवारी की सुविधा ले सकते हैं। SDM भरवौर अजय कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मणिमहेश यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चरों की आवाजाही के दौरान सावधानी बरतें। उन्होंने श्रद्धालुओं से निर्धारित दरों का ध्यान रखने और किसी प्रकार की समस्या अथवा अधिक वसूली होने पर संबंधित नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज करवाने की अपील की है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, थेरेपी एवं विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश और साम्फिया फाउंडेशन के बीच मोबाइल रिसोर्स सेंटर थेरेपी ऑन व्हील्स के संचालन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। यह पहल समग्र शिक्षा के अंतर्गत शुरू की जा रही है। इस मौके पर समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा तथा साम्फिया फाउंडेशन की फाउंडर एवं निदेशक डॉ. श्रुति भारद्वाज ने MOU पर हस्ताक्षर किए। प्रारंभिक चरण में तीनों मोबाइल सेंटर का संचालन मंडी, शिमला और कांगड़ा जिलों में किया जाएगा। राजेश शर्मा ने कहा कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभाग का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को केवल विद्यालयी शिक्षा से जोड़ना ही नहीं बल्कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की समय पर पहचान कर उन्हें आवश्यक शैक्षणिक, थेरेपी, पुनर्वास एवं अन्य विशेषज्ञ सेवाओं से जोड़ना है। नेपाल में हाल की विनाशकारी बाढ़ ने हिमालय में जमा पानी और अस्थिर पहाड़ों के खतरे को फिर सामने ला दिया है। इसी बीच 2026 में सामने आए नए सैटेलाइट अध्ययन ने बताया है कि उच्च हिमालयी एशिया में ग्लेशियर झीलों का कुल क्षेत्रफल 2016-2017 से अब तक 5.5% बढ़ा है। पूर्वी हिमालय में अकेले इन झीलों का क्षेत्रफल 14.1 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। नए अध्ययन में पूरे उच्च हिमालयी एशिया में 31,698 ग्लेशियर झीलें दर्ज की गई। भारतीय हिमालयी नदी घाटियों में 676 ऐसी ग्लेशियर झीलें मिली हैं जिनका आकार अब काफी बढ़ गया है। इनमें 130 झीलें भारत में हैं। इनमें 65 सिंधु, 7 गंगा और 58 ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में है। ग्लेशियर झीलें ग्लेशियर के पीछे हटने और बर्फ पिघलने से बने पानी के जमा होने पर बनती हैं। इनमें से कुछ झीलें बर्फ, चट्टान या मलबे से बने प्राकृतिक बांध के पीछे होती हैं। पानी के बिल काटने में अब मनमानी नहीं चलेगी। जल शक्ति विभाग ने मैनुअल बानी ऑफलाइन बिलिंग पर सख्ती करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन बिलिंग अनिवार्य कर दी है। इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन बिलिंग मॉड्यूल तैयार किया है। इंटरनेट या तकनीकी सुविधा की गंभीर समस्या वाले दूर दराज क्षेत्रों में ही विशेष परिस्थिति में मैनुअल बिल काटने की अनुमति होगी। इसके लिए उच्च अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी। प्रदेश में अभी सभी पानी के कनेक्शनों पर मीटर नहीं लगे हैं, इसलिए कई उपभोक्ताओं को औसत खपत के आधार पर बिल जारी होते हैं। डिविजन स्तर पर मैनुअल बिलिंग से नए और बंद कनेक्टानों के साथ भुगतान के रिकॉर्ड में अंतर को आशंका रहती है। हिमाचल प्रदेश में कई अनछुए पर्यटक स्थल हैं जिनको विकसित करने की सरकार की योजना है। खासकर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर्यटक पहुंचे तो वहां बड़ा पर्यटन कारोबार विकसित हो सकता है। सरकार ने प्रदेश के दूर दराज के जिला चंबा को भी विकसित करने की विशेष योजना बनाई है। जिला चंबा में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को नए मंतव्यों से जोड़ने के लिए सरकार ने कई योजनाएं प्रस्तावित की हैं। चंबा जिले में डलहौजी, खजियार, चंबा, जोत, भरमौर, क्युआड़ी, सलूनी, तलेरू, साचपास, देवी कोठी, पांगी, श्री मणिमहेश, खुड़ी मराल और द्वाट महादेव सहित अनेक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन गतिविधियों के विस्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले में 335 होटल, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट जबकि 452 होम स्टे संचालित हैं। इसके अलावा 84 ट्रैवल एजेंसियाँ,
49 रेस्टोरेंट, 219 टूरिस्ट गाइड और करीब 150 फोटोग्राफर पर्यटन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। सरकार के अनुसार ये आंकड़े चंबा में बढ़ रही पर्यटन अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। प्रदेश भर में चलाई जा रही एम्बुलेंस में अगर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। सर्पदंश के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अब NHM विभाग सख्त हो गया है। प्रदेश के सभी CMO को निर्देश दिए गए हैं कि वे एम्बुलेंस को वैक्सीन उपलब्ध करवाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी को सांप काट ले तो उसको तुरंत ये वैक्सीन लगाई जाए। सरकार ने करीब एक माह पहले सभी एम्बुलेंस में वैक्सीन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी भी NHM विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ एम्बुलेंस में वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे में विभाग ने अब सख्त निर्देश दिए हैं कि इसको लेकर जांच होगी और वैक्सीन उपलब्ध न होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में हर साल सांप काटने के सैकड़ों मामले सामने आते हैं। इनमें कुछ लोगों की मौत तक हो जाती है। मौत होने का मुख्य कारण भी यह रहता है कि सांप काटने के बाद समय से लोगों को अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तभी सरकार ने 108 एम्बुलेंस में ही एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है ताकि समय रहते ही मरीज को उपचार मिल सके। हिमाचल प्रदेश में अब बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल करने वाले और लापरवाही बरतने वाले परीक्षा केंद्र बच नहीं पाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कमर कस ली है। बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों की ऑडियो वीडियो आधारित सीधी निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने सख्त निर्देश जारी करते हुए प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों को 5 सितंबर तक CCTV कैमरों और संबंधित व्यवस्थाओं की पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन गूगल पर पत्र के जरिए सौंपने का अंतिम आदेश दिया है। परीक्षा की पवित्रता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा कक्ष में CCTV कैमरे की स्थिति और दिशा सटीक होनी चाहिए। डॉ. राजेश शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि कैमरे इस तरह से लगाए जाएं कि पूरा परीक्षा कक्ष और परीक्षार्थियों की हर एक गतिविधि स्पष्ट रूप से बिना किसी रुकावट के निगरानी स्क्रीन पर दिखाई दे। इसके अलावा परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था भी बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें उनके बीच पर्याप्त दूरी और कक्ष में सख्त अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के बडलथोर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए देहरा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की पहली ओजोन आधारित पेयजल उपचार परियोजना स्थापित की जा रही है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 46 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भविष्य में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की ओजोन आधारित जल उपचार परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दूषित पानी के सेवन से कई प्रकार की बीमारियों की संभावना बनी रहती है, इसलिए लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना आवश्यक है। उन्होंने क्षेत्र में पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बडलथोर में पशु चिकित्सालय खोलने की भी घोषणा की। श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत लोगों को लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए पंचायतों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को भी राज्य के संसाधनों में उसका उचित अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं और इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं।

साला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

सो नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

0: दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद भी है और आशा भी है कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे। देखिए, परेशानियां हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन उन परेशानियों से निकलकर अच्छी परिस्थितियों की ओर गुजरना जो है यही जीवन है। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह सा। बिल्कुल चलो, जीवन है चलने का नाम और चलते रहो सुबह शाम, तो चलते रहना चाहिए हमेशा। श्रोतों, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत, खासकर युवाओं को बहुत बहुत बधाई हो। और बिल्कुल श्रोतों, स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल जो है वो निभाता है, बहुत कहता हूँ सटीक, अहम और मजबूती भरा रोल जो है वो स्पोर्ट्स निभाता है। श्रोतों, खेलकूद हमारी ज़िंदगी में रहते हैं श्रोतों, तो हम मेंटली भी अच्छे रहते हैं, फिज़िकली भी हम लोग फिट रहते हैं, है ना। हमारे जहन में वो खुशी भी आती है, जब हारते हैं तो वो गम भी आता है, तो खेलकूद हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात आज की डेट में कि इंसान फिट कितना है, फिज़िकली कितना इंसान जो है वो फिट है, वो बहुत अहम है। और वो तभी फिट इंसान हो सकता है जब वो स्पोर्ट्स जो है वो खेले, जब वो खेल कूद में जो है वो रुचि रखे। श्रोतों, तो चलते हैं सबसे पहले मौसम की जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। श्रोतों, धर्मशाला का मौसम इस वक्त जो है वो लगभग 18 डिग्री से लेके 21 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है वो तापमान जो है वो बना हुआ है श्रोतों, है ना जी। और जो अधिकतम तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है आज पूरे दिन में श्रोतों। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो रात के समय 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रहने वाला है श्रोतों। आमतौर पर हमने देखा कि बादल ही आजकल, क्योंकि बरसात है तो ये स्थिति है कि बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बरसात जो है वो हो रही है। लगभग नमी की बात करूँ श्रोताओं, तो नमी जो है वो लगभग 90% से ऊपर की जो है वो रही है। तो ये है मौसम की जानकारी। और आज है श्रोताओं, बिल्कुल एक बार फिर बताना चाहता हूँ, नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो देखिए, खेलकूद के लिए ना दिल जो है वो ज़िद्दी होना चाहिए। अगर आपका दिल जो है वो ज़िद्दी है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वो ज़िद्द, वो ललक आपके पास होनी चाहिए, आपके जहन में, आपके दिल और दिमाग में जो है वो ज़िद्द होनी चाहिए। और ख़ासकर जो युवा वर्ग है उसके जहन में वो ज़िद्द जो है वो होनी चाहिए, ज़िद्द होनी चाहिए, उस मुकाम को हासिल करने की ज़िद्द होनी चाहिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने की ओलंपिक पर। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए श्रोताओं, आपको बहुत मेहनत जो है वो करनी पड़ती है, चाहे वो आप क्रिकेट की बात ले लीजिए, चाहे वो आप फुटबॉल की बात लीजिए, हॉकी की बात लीजिए, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, मतलब अगर आप इंडिया खेलोगे तो उस हिसाब की मेहनत जो है वो मुझे लगता है 7-8 साल की उम्र भी मैं बहुत बता रहा हूँ, 4-5 साल की उम्र में जो है वो आपको वो जिद जो है वो आपके दिल में लानी होगी श्रोताओं। तो आइए इसी बीच में ये प्यारा सा गीत जो है वो भी सुनते हैं, जिद्दी दिल। अब मेरी आप सभी के रेडियो सेट पर मेरी कॉम फिल्म से लिया गया गीत है और विशाल डडलानी ने इस गीत में जो है वो अपनी खूबसूरत सी आवाज़, बेहतरीन सी आवाज़ दी है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ।

शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेरी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला चल रहा है। ये नाचीज सचिन कपूर इस समय से कार्यक्रम को होस्ट कर रहा है। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतों, और जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है श्रोतों, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर, जी बिल्कुल, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है श्रोतों। ये दिन हमें शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और खेल भावना को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है श्रोतों। इस अवसर पर आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो है वो बिल्कुल आप अपने विचार जो है वो युवाओं के साथ अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। जो भी आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में बेहतरीन कोई हॉकी प्लेयर है या अन्य प्लेयर है, तो उसके विचारों को आप सुन सकते हैं श्रोतों की, वो किस तरह से बेहतर हुआ है ना, उसकी स्टोरी जो है वो आप जान सकते हैं श्रोतों, क्योंकि खेल जो है वो आपके जीवन, हम सभी के जीवन में, इवन कि मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है श्रोतों। ये दिन भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त 1905 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है श्रोतों। भारत सरकार ने इस दिन के माध्यम से श्रोतों देश के नागरिकों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने और फिटनेस को जीवन शैली बनाने के लिए जो है वो प्रेरित किया है श्रोतों। खेल हमारे भीतर टीम भावना, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप जिसको कहते हैं, और धैर्य जैसे गुणों का विकास जो है वो करता है श्रोतों। जब भी हम कोई खेल खेलते हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो श्रोतों, है ना, आज के डिजिटल युग में मोबाइल स्क्रीन से बाहर निकलकर मैदान पर वक्त बिताना जो है वो हर युवा के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हो चुका है। लेकिन आज का युवा जो है, चाहे वो युवा है, चाहे वो आज का 2 साल का बच्चा है श्रोतों, वो मोबाइल स्क्रीन पर इतना घुसा है, इतना ज़्यादा डीपली जो है वो घुस चुका है कि उसे ग्राउंड का शायद जी भी ना पता हो कि ग्राउंड होता कैसे है और ग्राउंड में करते क्या है। सो ये पेरेंट की एक तरह से भागीदारी बन जाती है श्रोतों, जिम्मेदारी बन जाती है, वो भागीदार बने उस चीज़ में कि बच्चों को जो है वो स्पोर्ट्स के बारे में बताएं, है ना, इन महान खिलाड़ियों के बारे में जो है वो बताएं और उन्हीं की प्रेरणा तले जो है वो उन्हें सिखाएं कि कुछ तो इन जैसा जो है वो करके दिखाओ भारत के लिए, खेल के लिए। तो चलिए श्रोतों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

छोटो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला ट्यून किया है। और आइए जी कार्यक्रम में बिल्कुल क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस है, इस बारे में भी हम बातचीत जो है वो ज़रूर करेंगे। जितने भी हमारे माननीय गणमाननीय आदरणीय लोग हमें सुन रहे हैं, ज़रूर हम जी इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ में जो है वो जानकारियों का पिटारा भी खोलते रहते हैं, है ना जी। अन्य जानकारियां जो है वो आप तक हम साझा करते हैं। श्रोतों, स्मार्ट सिटी धर्मशाला नगर निगम के वार्ड नंबर 11 के वाम नगर क्षेत्र में कूड़ा जो है वो कूड़े की समस्या जो है वो श्रोतों बढ़ती ही जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ किराएदार जो हैं घरों से निकलने वाले कूड़े को नगर निगम की डोर टू डोर व्यवस्था में देने के बजाय सड़क किनारे बैग में डालकर जो है वो छोड़ रहे हैं। श्रोतों, आरोप है कि कुछ लोग कूड़ा उठाने का निर्धारित शुल्क बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सड़क किनारे पड़े कूड़े के बैग आवारा कुत्तों के फोड़ने से घरेलू कचरा सड़क पर जो है वो बिखर जा रहा है। शतवा आवारा कुत्ते के जो है वो कभी किसी चीज़ को फोड़ रहे हैं, कभी किसी चीज़ को जो है वो फाड़ रहे हैं शतों, है ना, कभी किसी चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, तो उस वजह से जो है वो घरेलू कचरा जो है वो सड़क में बिखर जा रहा है शतों, जिससे आसपास गंदगी फैल रही है। जाहिर सी बात है फैलेगी शतों। वहीं नाले के साथ लगते मकानों से लोग नगर निगम को कूड़ा उठाने का शुल्क देने के बावजूद घरेलू कचरा सीधे नाले में डाल रहे हैं शतों। इससे नाले में प्लास्टिक और अन्य कचरा जमा हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान नाले में पानी का जो तेज़ी है वो बढ़ने पर जमा कचरा बहकर जो है वो आगे जा रहा है शतों, जिससे नाले के आगे और भी समस्याएं आसपास जो है वो गंदगी फैलने की आशंका हो रही है ना। और लोगों के अनुसार कूड़ा उठाने की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद सड़क और नाले में कचरा डालना नागरिक जिम्मेदारी नहीं है, नागरिक की ये जिम्मेदारी नहीं है और जागरूकता की कमी को जो है वो दर्शा रहा है शतों। वार्ड नंबर 11 के वाम नगर के जितने भी किराएदार हैं जो सुन रहे हैं वो इस काम को, ज़रूरी नहीं है किराएदार, हो सकता है कुछ लोकल लोग भी जो हैं वो शामिल हों, हो सकता है हम डैम शोर नहीं है, हो सकता है कुछ राम नगर के कुछ लोकल लोग भी इस तरह की वारदात को जो है वो अंजाम देते हों, और किराएदार तो हैं, तो जो भी लोग हैं उन सभी से हम गुजारिश ही कर सकते हैं।

हैं कि इस तरह से जो है वो अपने अच्छे स्थान को जो है वो गंदा ना बनाए शोधो, है ना जी। और ये समस्या एमसी में जाकर जो है वो ठीक है, कुछ एक प्रतिशत हो सकता है कि हल हो जाए, लेकिन आशुतों ये समस्या आपको खुद समझनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो जागरूकता चाहिए, जो आम लोगों में जो है वो होनी चाहिए, श्रोताओं जागरूक भरा जो है वो होना चाहिए। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। तो चलिए लेके चलेंगे आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। आइए ना, वो राजा हिंदुस्तानी मूवी का वो दौर याद करते हैं जब करिश्मा कपूर और बिल्कुल आमिर खान जुदा हो रहे थे। उस समय एक दूसरे से कह भी नहीं पा रहे थे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो मुखड़ा, वो लाइन, वो गीत, वो एहसास, वो समय, वो मंजर याद कर लेते हैं अभी सचिन कपूर के साथ वेड़ी गुंजन धर्मशाला में।

बिल्कुल श्रोताओं, गूंज अपनेपन की होनी भी चाहिए, रहनी भी चाहिए और सदैव गूंजती भी रहनी चाहिए श्रोताओं, जो कि हम सभी के लिए जो है वो बहुत मतलब खासकर हमारे लिए जो यहाँ पर आरजेस हैं, जो यहाँ पर अपना जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए श्रोताओं, क्योंकि यही गूंज हमें एनर्जेटिक बनाती है, यही गूंज हमें बहुत कुछ सिखाती है श्रोताओं। मुझे लगता है कि हम कोई भी इतने जो हैं मतलब मैं खुद के लिए बात कर रहा हूँ कि शायद हम उतने प्रोफेशनल नहीं हैं, मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। हम रोज़ाना जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीखते हैं श्रोताओं, और सीखकर जो है वो घर जाते हैं। और मुझे लगता है कि इंसान कोई भी जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, उसे तय उम्र सीखना चाहिए और सीखता रहता है श्रोताओं, तभी जो है वो गाड़ी ट्रैक पर चलती है है ना। फ़िलहाल श्रोताओं ट्रैक पर चलेंगे हम सभी, क्योंकि आप सभी बने हुए हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और आरजे सचिन कपूर को बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने वीडियो सेट पर। तो चलिए श्रोताओं बताते चलते हैं, फेसबुक के माध्यम से हम लाइव हुए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे है आज जी बिल्कुल, तो उसके बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं श्रोताओं। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को जो है वो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया श्रोताओं। आप सभी को बताना चाहते हैं आज 29 अगस्त का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है श्रोताओं, ये दिन भारत के उस गौरव का प्रतीक है जिसने दुनिया भर में मैं कहना चाहूँगा तिरंगे का मान बढ़ाया है। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है श्रोताओं, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने खेल को सिर्फ खेल नहीं समझा, जिसने खेल को सिर्फ खेल नहीं बल्कि उसे जिया है, उसे जीकर देखा है, उसे जीकर दिखाया है श्रोताओं। उनके इसी समर्पण को याद करते हुए आज जो है वो हम सब खेल और फिटनेस के महत्व इम्पोर्टेंस की जो है श्रोताओं वो बात कर रहे हैं श्रोताओं। साथियों जब हम मेजर ध्यानचंद जी का नाम लेते हैं तो हमें याद आता है कि असली युवा जोश क्या होता है श्रोताओं। एक ऐसा समय जब देश गुलाम था, सुख सुविधाएं नहीं थी, तब एक नौजवान रात के समय जो है वो रेलवे ट्रैक के किनारे चांद की रोशनी पर जो है वो हॉकी की प्रैक्टिस करता था। 1936 की ये बात है श्रोताओं, ओलंपिक का वो हिस्सा हम सबको जानना चाहिए जब जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जो है वो ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें जर्मनी की नागरिकता और सेना में उच्च पद का लालच दिया था, लेकिन ध्यानचंद जी ने पूरी विनम्रता और स्वाभिमान के साथ कहा भारत मेरा देश है, मैं इसी देश के लिए जो है वो खेलूँगा। युवाओं के लिए ये सबसे बड़ा सबक है श्रोताओं जी बिल्कुल, और ये सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अगर आपके भीतर अपने काम और अपने देश के लिए सच्चा जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत आपको जो है वो गिरा नहीं सकती है, दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपको श्रोताओं हिला नहीं सकती है, बशर्ते आप में वो जुनून होना चाहिए, आप में वो खेल के प्रति ललक होनी चाहिए श्रोताओं, वो ललक बहुत ज़रूरी है खेल में श्रोताओं, ज़िंदगी में श्रोताओं जी बिल्कुल, ज़िंदगी में वो ललक होनी चाहिए तभी जो है वो नियंत्रण आप आगे बढ़ सकते हैं श्रोताओं लाइफ में। बहरहाल मैं हूँ सचिन कपूर और इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, बने रहेगा

इस नाची सचिन कपूर के साथ लेके चलेंगे श्रोतो आप सभी को जी बिल्कुल इस गीत की ओर।

शुदा एफ एम एंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर मेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी श्रोता हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, जितने भी माननीय सम्माननीय गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो हमें सुन रहे हैं और हमारे बहुत प्यारे प्यारे से और जितने भी श्रोता है वो हमें सुन रहे हैं, आप सभी का पुनः मैं सचिन कपूर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ श्रोताओं। चलिए चलते हैं और श्रोतो, नेपाल में नहीं थम रही आफत, श्रोतो फिर मंडराया बाढ़ का खतरा, तिब्बत में झील फटने से जो है वो भोटे कोसी नदी उफान पर, श्रोतो बाढ़ में अब तक 550 से ज़्यादा लोगों की मौत है और 1500 से ज़्यादा लोग जो है वो लापता है श्रोतो। ये वाकई में ही ये जो प्राकृतिक आपदा है ना श्रोतो, ये कहीं भी आ सकती है, किसी भी देश के कोने में जो है वो आ सकती है और कभी भी आ सकती है श्रोतो। चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। आप सभी सुन रहे हैं इस समय आरजे सचिन कपूर को बिल्कुल लाइव रेडियो गुंजन धर्मशाला में। तो श्री मणि महेश यात्रा 2026 के तीसरे दिन श्रोताओं मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 385 श्रद्धालु पैदल यात्रा मार्ग से पवित्र डल में जो है वो डुबकी लगाने के लिए हटसर से रवाना हुए। इसके साथ ही भरमौर से गौरीकुंड के लिए जो है वो हेली टैक्सी की 21 उड़ानें भरी गई श्रोताओं। इन उड़ानों के माध्यम से भरमौर से गौरीकुंड के लिए 104 श्रद्धालुओं तथा गौरीकुंड से भरमौर के लिए 86 श्रद्धालुओं ने जो है 66 श्रद्धालुओं ने जो है वो हवाई सेवा का लाभ उठाया श्रोतों। उल्लेखनीय है कि मणिमहेश यात्रा का आधिकारिक तौर पर जो है वो आगाज़ 26 अगस्त को हो चुका है। पिछले 3 दिनों से जो है वो मणिमहेश के पवित्र डल में डुबकी लगाने के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जा रहा है। 3 दिनों के दौरान पैदल यात्रा मार्ग के दौरान कुल 1075 श्रद्धालु हटसर से रवाना हुए हैं श्रोतों। हेली टैक्सी के जरिए 307 श्रद्धालु पवित्र डल में डुबकी लगाने के लिए मणिमहेश गए हैं श्रोतों। 21 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट जारी है, ये पूरी जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए श्रोतों लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को, गीत संगीत का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा श्रोतों, गीत संगीत का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने रहिएगा वेड़ी गुंजन की इसी ही गूंज के साथ, लेके चलेंगे आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शुद्ध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं इस नाचीज के साथ सचिन कपूर के साथ। आइए जी, आई होप सो आप सभी को हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी जो है वो जानकारियों के साथ जो है वो ज़रूर रूबरू हो सकें और साथ ही साथ गीत संगीत का ये दौड़, गीत संगीत की ये दौड़ जो है वो यूं ही दौड़ती रहेगी आपके अपने वेड़ी गुंजन धर्मशाला की गूंज के साथ। लेके चलते हैं अगली जानकारी की ओर आप सभी श्रोताओं को। 31 अगस्त से जो है श्रोताओं वो हो सकता है भारी बारिश का अलर्ट जारी हो। जी बिल्कुल, प्रदेश के बीते कुछ दिनों से कमज़ोर पड़े मॉनसून ने फिर से एक बार जो है वो सक्रिय होने की आसार जो है वो लग रहे हैं श्रोताओं। मौसम विभाग ने राज्य में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जो है श्रोताओं वो जताई है। इन 4 दिनों के दौरान कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सितंबर महीने की शुरुआत प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ होने की संभावना है श्रोताओं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 29 और 30 अगस्त को भी राज्य में मौसम खराब रह सकता है और कई स्थानों पर बारिश जो है होने की संभावना है। हालांकि इन दोनों दिनों के लिए जो है वो कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है श्रोताओं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 2 और 3 सितंबर को भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार इस दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं श्रोताओं। तो 3 सितंबर तक जो है वो झमाझम बारिश हो सकती है 31 अगस्त से कुछ एक इलाकों में, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हो। वैसे तो यहाँ पर भी इस समय मॉनसून लग रहा है कि धीमा पड़ चुका है, हल्की फुल्की बारिश जो है वो रोज़ाना हो रही है, लेकिन 31 से 3 तक जो है वो झमाझम बारिश होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है श्रोताओं। ऐसा मौसम विज्ञान की ओर से हम तक जानकारी पहुँची और हमने कोशिश की कि अपने श्रोताओं तक ये जानकारी हम सटीक तरीके से पहुँचा सकें। आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। लेके चलते हैं श्रोताओं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। गीत संगीत जो है वो यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं, लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को अब इस और।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये वेड़ी गुंजन धर्मशाला है और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचार सुनने का। शाम के 7 बज चुके हैं श्रोतों।
1: और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री मिर्जियायेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। मंत्रालय ने कहा कि शवों की पहचान के लिए DNA नमूनों के विश्लेषण में सहायता हेतु भारत से 6 फॉरेंसिक विशेषज्ञ दल आज काठमांडू पहुंचने वाला है।

0: सुरंग बचाव के लिए एक विशेष तकनीकी दल कल काठमांडू पहुंचा। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत के तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
1: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक से सुधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेल स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे।
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
4: अपनों के लिए और अपने लिए।

0: रिमझिम बरसता भादो।
1: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर रेडी गुंजन धर्मशाला में। आई श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आप सभी श्रोताओं को लेकर चलते हैं इस प्यारे से गीत के बाद, अंतराल के बाद।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी श्रोताओं का जो है वो बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए अगली जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। प्रदेश की कम से कम भी 70 सड़कों पर जो है वो थमे हैं गाड़ियों के पहिए। शोतो प्रदेश में शुक्रवार शाम तक जो है भूस्खलन के कारण 66 सड़कें बंद थी। शोतो इनमें मंडी ज़िला 28 और कुल्लू में 16 सड़कें बंद रही। श्रोतो इसके अलावा 12 बिजली ट्रांसफार्म और एक पेयजल योजना प्रभावित रही। 30 जून से अब तक की ऐसी घटनाओं में 250 लोगों की जो है वो मौत हुई है श्रोतो और 396 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। इस अवधि में 96 मकान, 17 दुकानें और 377 पशुशालाएं पूरी तरह नष्ट हुई हैं। 429 मकानों को जो है वो श्रोताओं नुकसान पहुंचा है। मानसून के कारण प्रदेश में अब तक करीब जो है वो श्रोताओं 1,183,000 जो है कम से कम माफ़ करें 1,183,00,00,000 रुपए की संपत्ति का जो है वो नुकसान आंका गया है। ये है अभी तक की जानकारी श्रोताओं जो हमने आप तक पहुंचाई। अब सभी बने हुए हैं इस समय वेड़ी गुंचन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं सचिन कपूर के साथ। आइए लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से एक और गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अगली जानकारी की ओर, अगली जानकारी के पिटारे की ओर। पिटारा खोलते हैं और पिटारे से निकालते हैं आप तक ये जानकारी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर के नदौन में राजकीय बारिश माध्यमिक पाठशाला के नए भवन की आधारशिला रखी। शतों इस भवन का निर्माण 17.52 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। शतों स्कूल भवन में 6 कक्षाएं, 7 प्रयोगशालाएं, 2 स्टाफ रूम, प्रधानाचार्य कार्यालय, बिजली कक्ष, एनएसएस कक्ष, सम्मेलन कक्ष, पुस्तकालय, नियंत्रण कक्ष, संगीत कक्ष, नृत्य कक्ष और कला कक्ष सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावी स्कूल भवन काफ़ी पुराना हो चुका है और नए परिसर का निर्माण इस वर्ष दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नया स्कूल परिसर आधुनिक, विशाल और आकर्षक होगा, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण सुविधाएँ मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह योग्यता और मेरिट के आधार पर की जा रही है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 30 सितंबर तक अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा की बुनियाद ढांचे को मजबूत करने का प्राथमिकता दे रही है, ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने घर के नज़दीक ही बेहतर शिक्षा की सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि नदौन में इस अत्याधुनिक खेल परिसर भी विकसित किया जा रहा है, जहां लगभग 14 इंडोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार खेल पर्यटन को बढ़ावा देकर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के लिए के नए अवसर जो है वो तैयार करने की दिशा में कार्य कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों की राय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और लोगों के लिए स्थायी आजीविका तथा रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए कई योजनाएँ लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर ज़िला में एम्स स्तर पर आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 74 बीघा भूमि चिन्हित यानी कि ढूंढी गई है, श्रोतों चिन्हित की गई है। संस्थान के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश देश के 5 शॉर्टलिस्ट किए गए राज्यों में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में एक जो है वो LID एंड हेल्थ केयर मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द जो है वो शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रोतों मुख्यमंत्री ने कहा कि नदौन पुल के पास ब्यास नदी के किनारे लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से एक नया घाट भी विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही बस स्टैंड को भी जो है वो बेहतरीन किया जाएगा, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के लोगों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता की समस्याओं का समाधान और सरकारी सेवाओं की तीव्रता उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों को दूर किया जा रहा है तथा आवश्यक सुधार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नदौन की जनता को लगातार मिल रहे स्नेह और
समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोगों के प्यार और विश्वास ने मुझे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया और मैं उनके कल्याण तथा क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। लेकिन आज जब मैं श्रोतों टांडा अस्पताल गया, अब ये मेरी निजी जानकारी है जो मैंने खुद एनालाइज़ की, जब टांडा अस्पताल गया तो वहाँ जाकर देखा कि कितना विकास जो है वो हो रहा है। जी बिल्कुल, एक ग्लब से लेके एक हैंड ग्लब से लेके सिरिंज तक जो है वो पेशेंट से बाहर से मंगवाई जा रही है। रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है वो स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर इंटर्नशिप करने वाली हमारी बहनों को छुट्टी मिल जाती है तो पीछे से कोई स्टाफ नहीं है कि वहाँ पर रिपोर्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा शुरू से ही जो है वो लगता है कुछ खास बेहतर जो है वो नहीं कर पाया है। श्रोतों, ये डिपार्टमेंट की बात नहीं है, जितने भी मंत्री शंत्री हैं, सरकारें आई सरकारें गईं, सरकारें रह भी रही हैं, सरकारें बन भी रही हैं, सरकारें गिर भी रही हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट में वो सुख सुविधा जो काम इंसान को होनी चाहिए। आए दिन आप वीडियो देखिए श्रोतों, आए दिन वीडियो देखिए, ज़रा फेसबुक पर नज़र दौड़ाइए, ज़रा कितनी ही टांडा को लेकर जो है वो कितनी ही चीज़ें जो है वो निकल कर आती हैं। श्रोतों, चलिए कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं, गुड इवनिंग धर्मशाला, लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को अब इस प्यारे से गीत की ओर।

तो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
2: माँ, बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
2: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना, समझ गया।
1: मम्मा
2: पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
1: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे।
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

भूमि पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ। तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है।
3: और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
4: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

अष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ। तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप टूट जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं,

It's alright.

0: क्रतुं महागाय सूर्य कोटि सम प्रवा निर्विघ्नम गुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बच्चे के परदादा का नाम बताइए।
1: लाला कैलाशनाथ मल्होत्रा।
0: अथ कैलाशनाथ मल्होत्रा पर पौत्र आगमनम सर्व कुटुंब कल्याण प्राप्त रस्तु। बच्चे के दादा का नाम?
2: रंजीत कुमार मल्होत्रा।
0: रंजीत कुमार मल्होत्रा पौत्र सर्व प्रसिद्धि प्राप्त रस्तु। बच्चे की दादी का नाम?
3: आशा मल्होत्रा।
0: आशा मल्होत्रा पौत्र आयुष्मान भव। बच्चे के पिता का नाम?
4: राज मल्होत्रा।
0: राज मल्होत्रा पुत्र चिरंजीवी भव। बच्चे की माँ का नाम?

रंजन रेडियो, घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।